0: लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस।
1: और राजन जी, जब जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए, कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफ्ताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना, प्रायोरिटी न्याय नहीं है।
0: क्यों देखना है कॉलेज, कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए, उसका कॉलेज का क्यों देख रहे, कोर्ट उसका क्यों देख रहे, हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है, तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए, हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे, इतना इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़की गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा, हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको, अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे, उसको फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी। हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं। हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते, क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ, क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको।
2: Right, Valkar, all of 27 years of age, who was, you know, killed by her live-in partner, and her body was chopped into multiple pieces that were then disposed of in the forest area of Delhi. Let's just get you details of this case.
3: She was strangled, chopped into pieces, her body stored in a freezer, and then disposed of in different parts of India's national capital. In 2022, Shraddha Valkar's murder most foul consumed a nation. Horrified by the barbaric nature of her death and disposal at the hands of her boyfriend, Aftab Poonawalla. You'd think that 4 years into such a murder trial, justice would have been served. The truth, not even close. On Saturday, NDTV exposed a shocking favour granted to Aftab by a Delhi court, permitting him to skip a scheduled hearing so he could appear for his MA Sociology examination from Tihar Jail. As the report went viral, the public asked, why should the main accused in one of India's most gruesome murder cases have court proceedings adjusted around his academic calendar? But as it turns out, that court leniency is just the tip of the iceberg. An NDTV investigation has now examined court records and spoken to sources familiar with the proceedings. What emerges is that this is not the first time the trial has been delayed or adjusted to accommodate Aftab's schedule. 10 months ago, proceedings were postponed after Aftab sought time for a dental appointment. On another occasion, the court also accommodated a request linked to a scheduled psychiatric consultation. Viewed individually, these may appear to be routine judicial orders. Viewed together, they point to a pattern where the accused's personal requirements have repeatedly taken precedence over the pace of a trial that has already stretched for more than 3 years. The scale of that delay is significant. The FIR in the Shraddha Valkar murder case was registered on November 10, 2022. Charges were framed only in May 2023. Since then, more than 215 hearings have taken place. Yet the prosecution is still presenting evidence. The charge sheet itself runs to more than 13,000 pages. NDTV has also accessed details explaining why the proceedings have moved so slowly. Cross-examination has become one of the biggest reasons. Sources say defense questioning frequently stretches across multiple hearings. One prosecution witness, a head constable, has already

0: that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
1: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
2: भारतम. आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
3: First move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
4: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
5: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
3: I decode the global pulse, shaping the market mood.
4: I bring insights that help you make decisions that matter.
5: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
3: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
10: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
11: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
10: Be part of jury.
12: Welcome back. After a six-year-long legal battle, the Delhi court has convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and three others for the brutal murder of the Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the riots that took place in Delhi in 2020. Tahir Hussain, alongside four other co-accused, was found guilty of murdering, of kidnapping, promoting religious enmity and also for rioting. Reacting to the development is Ankit Sharma's brother Ankur, who spoke exclusively to NDTV, expressing relief in court order and demanding death penalty or life imprisonment for the convicts. Amid all of this, the BJP has set out against the Aam Aadmi Party, accusing them of backing Tahir Hussain at the time of the riots and demanding an apology from Arvind Kejriwal. Aam Aadmi Party, however, has distanced itself from Tahir, claiming that he was suspended right after there was an FIR that was launched against him.
13: क्या कहना चाहते हैं सर बताइए. क्या कहना चाहते हैं सर बताइए. क्या कहना चाहते हैं सर बताइए.
14: आज जो कड़कड़डूमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं प्रवीण कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
8: देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए। डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। देखो, हमारे आर्गूमेंट बेसिकली ये आर्गूमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और नो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सेकेंड ये चीज़ थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
15: न्यायालय ने आज ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा मामले में कन्विक्ट करार दिया है। ये वही अंकित शर्मा है जो जिसके निर्मम हत्या हुई थी क्योंकि वो हिंदू थे, और ताहिर हुसैन को कन्विक्ट होने के ऊपर 302 की दफा लगी है। और यही ताहिर हुसैन के ऊपर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पूरे गैंग ने बचाव कोनी कोशिश करने की कोशिश की थी, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी थे। और जिस प्रकार से ताहिर हुसैन सिर्फ एक एक्टिव मेंबर नहीं थे आम आदमी पार्टी के, पूर्ण निगम पार्षद भी थे।
16: अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
17: जब कोर्ट के एविडेंस सामने लाए गए और बयान सामने लाए गए कि किस तरह से ताहिर हुसैन ने अपने पास वेपन भी रखे थे, उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट भी किया था, उन्होंने अंकित जो एक आईबी का ऑफिसर था उस पर अटैक कराने के लिए भी कहा और अंत में उसका कत्लेआम करवाया, अपने एक निगम पार्षद को आगे करके आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी उतने ही खतरनाक हैं जितना ताहिर हुसैन है।
18: कि आज देश के सामने सच सामने आया है, ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ऑफ राइटिंग। और जो मर्डर पे ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर पे कन्विक्शन हुआ है। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया।
19: The conviction of the entire Aam Aadmi Party Congress ecosystem which was behind this anti-Hindu riots. It was not just the murder of Ankit Sharma. He was murdered brutally, 45 times stabbed, and it was an attack on the Hindu community. And the Aam Aadmi Party not only sponsored it, it defended it. It said Tahir is being persecuted because he's a Muslim. Sanjay Singh, Amatullah Khan said it. Then Congress and MIM also defended. They defended Umar Khalid, Sharjeel Imam also. All the rioters and the accused, the terrorists in this entire anti-Hindu pogrom were defended by this ecosystem. So they are convicted. It shows Delhi 2020 was not organic, it was organized. Spontaneous nahi tha, sponsored tha. It was sponsored attack.
12: Let's get you the latest when it comes to the Ram Temple donation theft case. Supreme Court has stepped in issuing a notice to the Ram Temple Trust and asking the SIT to submit its report. At the same time, the Temple Trust has invited applications as far as the first ever CEO is concerned. The Trust is looking for someone aged between 50 to 70 years with 20 years of managerial experience. The applicant must be an actively practicing Hindu with preferences for a Ram devotee from the Vaishnav tradition. But the opposition is questioning the move, saying that the probe is still pending before the Supreme Court, and the trust should wait for the court's verdict. The Congress and the TMC are demanding a court-monitored investigation, alleging that the SIT probe is merely not enough.
20: राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन अभी राम मंदिर में हुई चोरी की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और गुनाहगारों को बचाने का काम हो रहा है।
21: निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और ट्रस्ट को निर्देशित किया है। ट्रस्ट के लोग तो मिलकर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के ट्रस्ट हैं ये, चाहे चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, गोविंद गिरी हो, सब मिलकर लूट रहे हैं। इनको निश्चित तौर से इनको दंड मिलना चाहिए। इनको दंड, मुझे लगता है कि जहाँ तक निश्चित भगवान राम इनको दंड दे रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इनको दंडित करेगा।
12: We will keep talking that story. For now, we're slipping into a short break. Back with the very latest as to what's happening between the US and Iran.

0: Qatar, as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it.
1: Note, American forces have used unmanned boats in an attack on an Iranian naval installation, their first ever offensive operation by sea drones, the U.S. Central Command confirmed, in the latest sign of how drones are reshaping modern warfare. The Central Command said it had employed three unmanned vessels in Sunday's attack on the Bandar Abbas naval base, calling this operation against a submarine and ship maintenance facility the first time American forces have employed sea drones in combat operations. This video, posted to the Central Command X account, showed what appeared to be aerial footage spliced together. Just take a good look. We'll continue to track the latest as far as the escalating West Asia crisis is concerned. For now, let's turn our attention to the other story we're tracking this morning. 2 days after a Delhi court allowed murder accused Aftab Poonawalla's case proceedings to be delayed for his examinations, NDTV's investigation has revealed what's happening behind the bars and why the trial is taking long to be concluded. Let me just rejig your memory there. Aftab is accused of murdering his girlfriend, Shraddha Walkar, chopping and disposing her body parts. And sources have told NDTV that Aftab Poonawalla was not only allowed to skip his own proceedings for a sociology exam, he has also deferred dates for alleged dental and psychiatric appointments. Sources also said that the cross-examination process is taking more time than usual and that evidence is still being presented in court. Meanwhile, there are many questions. As the Delhi court allowed Shraddha Walkar's murder accused Aftab Poonawalla to skip that hearing for an examination, and the larger questions it also raises are about judicial discretion, victims' right, public faith in the justice system, and the pace of justice in one of India's most shocking murder cases. Our managing editor, Shivarur, has exclusively spoken to Shraddha Walkar's aunt. Listen in to what she told NDTV.
2: Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? Jo आफताब को जो जेल में बैठा है अभी कोर्ट हियरिंग्स अटेंड नहीं करना है उसको एमए सोशियोलॉजी का एग्जाम लेना है उसको तो कोर्ट ने इजाज़त दिया है कि चलो आप स्किप कर लो अब बाद में देखेंगे हियरिंग्स अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज़ को देख के कि आफताब को मल्टीपल बार ऐसे इजाज़त दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है आपका क्या कहना है इस पर राजल जी
3: जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है आज 5 साल होने को आए भाई साहब भी मर गए ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर करके उसकी हस्ती भी नहीं मिली कुछ भी करने को नहीं मिला आज इंतज़ार कर करके उन्होंने अलविदा कर दिया लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को फांसी चाहिए उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे वैसे बहुत चालू है तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है मैं तो चाहती हूँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो हमारे बच्ची को न्याय दो उसको पिताजी के न्याय दो बस
2: और राजल जी जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफताब का शेड्यूल देखना उनका जो उनका जो

0: जो एक आईबी का ऑफिसर था उस पर अटैक कराने के लिए भी कहा और अंत में उसका कत्लेआम करवाया। अपने एक निगम पार्षद को आगे करके आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी उतने ही खतरनाक हैं जितना ताहिर हुसैन है।
1: कि आज देश के सामने सच सामने आया है। ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ऑफ राइटिंग, और जो मर्डर पे ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर पे कन्विक्शन हुआ है। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया।
2: is a conviction of the entire Aam Aadmi Party Congress ecosystem which was behind this anti-Hindu riots. It was not just the murder of Ankit Sharma, he was murdered brutally, 45 times stabbed, and it was an attack on the Hindu community, and the Aam Aadmi Party not only sponsored it, it defended it. It said Tahir is being persecuted because he's a Muslim. Sanjay Singh, Amatullah Khan said it. Then Congress and MIM also defended. They defended Umar Khalid, Sharjeel Imam also. All the rioters and the accused, the terrorists in this entire anti-Hindu pogrom were defended by this ecosystem. So they are convicted. It shows Delhi 2020 was not organic, it was organized. Spontaneous nahi tha, sponsored tha. It was sponsored attack.
3: All right, let's switch tracks now. Chief Minister Omar Abdullah responded with a wishful, if only to a fake tweet attributed to Donald Trump, championing the restoration of Jammu and Kashmir's statehood. The fake tweet and Omar Abdullah's tongue-in-cheek comment came a day after he wondered whether he would have to knock on the doors of the US president if Delhi refused to hear his pleas. The Jammu and Kashmir chief minister defended the National Conference's upcoming Chalo Delhi protests at Jantar Mantar and criticizing the Modi government for delaying granting statehood to Jammu and Kashmir. Chief Minister Omar Abdullah asked if he should approach US President Donald Trump with his request instead if they aren't allowed to demand Jammu and Kashmir statehood in their own country's capital. And as Omar Abdullah shared a spoof Trump post, the BJP was quick to hit back, accusing him of making a criminal bid to internationalize the issue.
4: अब ये हमें कहते हैं ना, जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदा रा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए।
5: ओमर अब्दुल्लाज डिमांड फॉर स्टेटहुड इज वैलिड बट इट्स नॉट इनफ। द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स एंड हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन स्टेटहुड प्लस। व्हेन वी से स्टेटहुड प्लस वी मीन land rights, job rights, resources, constitutional rights of the people on land, jobs and resources. That's what Jammu Kashmir needs now.
6: Umar Abdullah ka ek videshi neta ka naam lekar Jammu Kashmir ke mudde ko antarrashtriya rang dene ka apradhik prayas behad durbhagyapurna hai. Jammu Kashmir Bharat ka abhinn ang hai aur uske vishayon par samadhan भारत के संविधान और लोकतंत्र संस्थाओं के दायरे में ही होगा।
3: All right, let's turn our attention to the latest updates in the Ram Temple donation theft case. The Supreme Court has stepped in, issuing notices to the Ram Temple Trust and asking the special investigation team to submit a status report. At the same time, the Temple Trust has invited applications for its first ever CEO. The trust, we're told, is looking for someone aged between 50 to 70 with 20 years of managerial experience, and the applicant must be an actively practicing Hindu. That's their prerequisite, with preference for a Ram pilgrim for the Vaishnav tradition. Those are the prerequisites that they have highlighted. The opposition is questioning the move, saying the probe is still pending before the Supreme Court and that the trust should wait for the court's verdict. The Congress and the Trinamool Congress are demanding a court-monitored investigation, alleging that the SIT probe at the moment is just not enough.
7: Ram Mandir mein मुख्य कार्यकारी अधिकारी की

0: नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन अभी राम मंदिर में हुई चोरी की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और गुनाहगारों को बचाने का काम हो रहा है।
1: राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, धन दक्षिणा को लेकर जो संगीन मामला सामने आया है, वहां की सरकार उन दरिंदों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। उनको फांसी की भी सजा हो जाए तो वह भी सजा, वह भी दंड कम होगा। इतना घिनौना अपराध उन्होंने भगवान के चढ़ावे के साथ किया है। पर हमारा खुद का ये मानना है कि देश में किसी भी प्रकार के मंदिरों में, प्रार्थना स्थलों में इस प्रकार का अगर घिनौना अपराध होता है तो उन्हें कड़ा से कड़ा शासन होना चाहिए, दंड होना चाहिए।
2: Alright, let's turn our attention to the big story we're tracking on NDTV. 3 days after NDTV's investigation exposed a troubling pattern of maternal deaths at government hospitals across Rajasthan, the state government has responded with a series of measures that suggest that the issue has moved to the top of its agenda. But our investigation documented 18 maternal deaths since May, including 9 in just 6 days, across hospitals in Kota, Bikaner and Jodhpur. Families alleged a lack of transparency, saying they struggled to access complete medical records, while in some cases, post-mortem findings did little to answer the questions surrounding these deaths. Now we're told Rajasthan's Health Minister, Gajendra Singh Khimsar, is scheduled to visit Bhilwara. The Health Department has convened an urgent high-level review meeting as well, and the government has ordered a special panel inquiry. But the real test, you must note, begins now. Will the inquiry establish individual accountability where lapses are found? Will it identify systemic failures in maternal health care? And of course, most importantly, will grieving families finally get answers that have so far remained elusive?
3: NDTV's investigation into the maternal deaths that shook Rajasthan has now reached the highest levels of the state government. After our report from Kota, Bikaner and Jodhpur highlighted the unanswered questions surrounding the deaths of new mothers, the Rajasthan Health Department has called an emergency review meeting in Jaipur. The Health Minister summoned principals of all government medical colleges, hospital superintendents, senior gynecologists and experts, including specialists from AIIMS. The focus: what caused the sudden spike in maternal deaths, and could these tragedies have been prevented?
4: Sporadically, so quickly, and we've checked all the medications, the drugs, everything. So we are ourselves very anxious to know that where is the thief actually?
3: NDTV's investigation had documented families still waiting for answers, newborns growing up without their mothers, and survivors spending weeks on dialysis instead of caring for their babies.
5: मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को, कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
3: Families told NDTV they are still struggling to obtain complete medical records and say they have received little support after losing their loved ones.
6: मुझे डॉक्टर

0: rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
2: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
3: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
0: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहां भी अन्याय हो,
4: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है.
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे. क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
5: प्रशिक्षण हम हमारे
4: नहीं मांगेंगे
5: सर.
6: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आतुर मसाला।
5: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
7: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
8: We should be

0: communal bid to internationalize the very issue.
1: अब ये हमें कहते हैं ना, जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदा रा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए।
2: ओमर अब्दुल्लाज डिमांड फॉर स्टेटहुड इज वैलिड बट इट्स नॉट इनफ। द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स एंड हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन स्टेटहुड प्लस। व्हेन वी से स्टेटहुड प्लस वी मीन land rights, job rights, resources, constitutional rights of the people on land, jobs and resources. That's what Jammu Kashmir needs now.
3: Umar Abdullah ka ek videshi neta ka naam lekar Jammu Kashmir ke mudde ko antarrashtriya rang dene ka apradhik prayas behad durbhagyapurna hai. Jammu Kashmir Bharat ka abhinn ang hai aur uske vishayon par samadhan भारत के संविधान और लोकतंत्र संस्थाओं के दायरे में ही होगा।
0: Switching tracks now, after a 6-year long legal battle in the Delhi court, now they have gone ahead and convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and others for the brutal murder of the IB officer Ankit Sharma. This happened during the Delhi riots, which took place in the northeast part of Delhi in 2020. Now, Tahir Hussain, alongside four others, were found guilty of a murder, kidnapping, promoting religious enmity, and also of rioting. Reacting to the development is the family of Ankit Sharma. The brother, Ankur, spoke exclusively to NDTV, expressing relief in the court order and demanding the death penalty or at least life imprisonment for the convicts. Now, amidst all of this, the BJP hit out against the Aam Aadmi Party, accusing them of backing the man at a time of riots and demanding an apology from Arvind Kejriwal. Now, we have Aam Aadmi Party on the other side. They have distanced themselves from Tahir Hussain, claiming that he was suspended right after there was an FIR that was registered against the man.
4: कड़कड़डूमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं प्रवीण कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
5: देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए। डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। देखो, जो हमारे आर्गूमेंट, बेसिकली ये आर्गूमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और न वहाँ पे प्रजेंट थे। सेकेंड ये चीज़ थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
6: 2020 Delhi riots were not just unfortunate but a blot that while we had a foreign dignitary, no less than the President of the United States here, we had riots in Delhi. It was orchestrated. It was something that was planned not just against the national interest but to make sure that there was an incident in the capital of Delhi in which Mr. Tahir Hussain, a formal member of the Aam Aadmi Party and a councillor, finally today has been held guilty for the murder of a functionary of the government, Ankit Sharma, who was an IB functionary.
7: न्यायालय ने आज ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा मामले में कन्विक्ट करार दिया है। ये वही अंकित शर्मा है जो जिसके निर्मम हत्या हुई थी क्योंकि वो हिंदू थे, और ताहिर हुसैन को कन्विक्ट होने के ऊपर 302 की दफा लगी है। और यही ताहिर हुसैन के ऊपर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पूरे गैंग ने बचाव कोनी कोशिश करने की कोशिश की थी, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी थे। और जिस प्रकार से ताहिर हुसैन सिर्फ एक एक्टिव मेंबर नहीं थे आम आदमी पार्टी के, पूर्ण निगम पार्षद भी थे।
8: अब देखिए बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
9: जब कोर्ट के एविडेंस सामने लाए गए और बयान सामने लाए गए कि किस तरह से ताहिर हुसैन ने अपने पास वेपन भी रखे थे, उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट भी किया था, उन्होंने अंकित जो एक आईबी का ऑफिसर था उस पर अटैक कराने के लिए भी कहा और अंत में उसका कत्लेआम करवाया, अपने एक निगम पार्षद को आगे करके आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी उतने ही खतरनाक हैं जितना ताहिर हुसैन है।
10: कि आज देश के सामने सच सामने आया है, ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ऑफ राइटिंग, और जो मर्डर पे ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर पे कन्विक्शन हुआ है। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया।
11: There's a conviction of the entire Aam Aadmi Party Congress ecosystem which was behind this anti-Hindu riots. It was not just the murder of Ankit Sharma. He was murdered brutally, 45 times stabbed, and it was an attack on the Hindu community. And the Aam Aadmi Party not only sponsored it, it defended it. It said Tahir is being persecuted because he's a Muslim. Sanjay Singh, Amatullah Khan said it. Then Congress and MIM also defended. They defended Umar Khalid, Sharjeel Imam also. All the rioters and the accused, the terrorists in this entire anti-Hindu pogrom were defended by this ecosystem. So they are convicted. It shows Delhi 2020 was not organic, it was organized. Spontaneous nahi tha, sponsored tha. It was sponsored attack.
0: Let's just get you more breaking news coming in, and this is in regard to the event that was organized in Melbourne for the Prime Minister Modi's visit. Do remember the Indian diaspora that turned up in large number had the Congress party reacting to it, saying that it was all paid for. Now the Indian diaspora group which organized that Melbourne event honoring the Prime Minister has demanded an apology from Rahul Gandhi and Mallika Arjun Khandge. We have Aditya Rajkaul, my colleague, joining us. Aditya, there's an open letter that has now been written by the organizers demanding an apology, saying that, you know, those who made it to the event, they were obviously, it was a very large crowd, 30,000 to be precise, who turned up for the event, and those particularly, those Indian, participants who were not from Melbourne, but made it a point to be there in Melbourne. You know, the allegation that's being made by the Congress party is that they were particularly flown in, they were specially flown in, and that too was paid for.
12: Well, that's right, Divya. We have access to an open letter that has been written to Rahul Gandhi and Mallika Arjun Kharge of the Congress party by the Indian diaspora in Australia. These were the, you know, members of the diaspora who had organized the welcome diaspora event for Prime Minister Narendra Modi, but also organized a special Modi Airways flight from Sydney to Melbourne for the hundreds of Indian Australians who wanted to attend Melbourne Meets Modi event on 9th of July at the Marvel Stadium. Remember, immediately after that, several Congress leaders and spokespersons had attacked the, you know, diaspora members and said that this was a paid crowd. And now in this open letter, the diaspora is saying that this was not an event funded by the BJP. It was voluntarily done, and members from Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane and elsewhere in Australia conducted these journeys and independently, and this was not entirely funded by the Government of India, Government of Australia or the BJP. Now, the members of the diaspora have publicly sought an apology to the organizers, volunteers, passengers and the broader Indian-Australian community from the Congress party, whose integrity has been unfair. fairly questioned. They have also said that there should be public acknowledgement that there is no evidence that the Modi Airways flight was financed by the BJP or the Government of India. They have also sought withdrawal of the allegations that its

0: राम मंदिर में हुई चोरी की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और गुनाहगारों को बचाने का काम हो रहा है।
1: राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, दान दक्षिणा को लेकर जो संगीन मामला सामने आया है, प्रवाह की सरकार उन दरिंदों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। उनको फांसी की भी सजा हो जाए तो वह भी सजा, वह भी दंड कम होगा। इतना घिनौना अपराध उन्होंने भगवान के चढ़ावे के साथ किया है। पर हमारा खुद का ये मानना है कि देश में किसी भी प्रकार के मंदिरों में, प्रार्थना स्थलों में इस प्रकार का अगर घिनौना अपराध होता है तो उन्हें कड़ा से कड़ा शासन होना चाहिए, दंड होना चाहिए।
2: We just heard the opposition say, let the, you know, basically the report come out, which has a time frame of a week's time. It's on the 20th when that report of the SIT will be submitted, asking for, that CEO's application to be put on hold, at least up until then. With that, we're stepping into a short break. Back with the whole lot more on the other side. Thank you for watching.

0: to prove the crime, because of which the family here is in dire help, and they state that they want justice to be served for Ketan, and for which we're expecting. And you know, now that after the letter is written, and also while the incident after the entire murder was allegedly committed by CI and Chetan, the family had also met Chief Minister Devendra Fadnavis, who assured that the matter will be taken into a fast track court, and we're expecting that now with all the legalities that are being done by both the families. CA on one end is, you know, giving statements that that are contradictory, but simultaneously is trying to investigate and prove all the angles related to the case. Back to you.
1: Right, certainly. So even as Ketan's family is seeking justice, a lot of shocking details emerging in the case, Sujata, with each passing day. We'll, of course, closely track the developments. Thank you for those details. Let's shift our focus now. 2 days after a Delhi court allowed murder accused Aftab Poonawalla's case proceedings to be delayed for his exams, NDTV investigation has revealed what's happening behind bars and why the trial is taking long to be concluded. Remember, Aftab is accused of murdering his girlfriend Shraddha Walkar, chopping and disposing her body parts. Sources have told NDTV that Aftab Poonawalla was not only allowed to skip his own proceedings for an MA sociology paper, he has also deferred dates for alleged dental and psychiatric appointments. Sources also saying that the cross-examination process is taking more time than usual and that evidence is still being presented in court. In fact, a Delhi court allowed Shraddha Walkar murder case accused Aftab Poonawalla to skip a hearing for an examination. And the larger question it raises about judicial discretion, victims' rights, public faith in the justice system and the pace of justice in one of India's most shocking murder cases. NDTV's managing editor Shiv Arur has exclusively spoken to aunt of Shraddha Walkar. Listen in.
2: Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. क्या आप ये सब सुनकर आपको क्या महसूस हुआ जो आफताब को जो जेल में बैठा है अभी कोर्ट हियरिंग्स अटेंड नहीं करना है उसको एमए सोशियोलॉजी का एग्जाम लेना है उसको तो कोर्ट ने इजाज़त दिया है कि चलो आप स्किप कर लो आप बाद में देखेंगे हियरिंग्स अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज़ को देख के कि आफ्ताब को मल्टीपल बार ऐसे इजाज़त दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है आपका क्या कहना है इस पर राजल जी
3: जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है आज 5 साल होने को आए भाई साहब भी मर गए ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर करके उसको उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली कुछ भी करने को नहीं मिला आज इंतज़ार कर करके उन्होंने अलविदा कर दिया लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को फांसी चाहिए उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे वैसे बहुत चालू है तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है मैं तो चाहती हूँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो हमारे बच्ची को न्याय दो उसको पिताजी के न्याय दो बस
2: और राजल जी जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफ्ताब का शेड्यूल देखना उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना प्रायोरिटी न्याय नहीं है
3: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है नहीं हम लोग को न्याय चाहिए ना हम लोग को न्याय चाहिए उसका कॉलेज का क्यों देख रहे कोर्ट उसका क्यों देख रहे हम लोग ने गुनाह किया है हम लोग ने गुनाह नहीं किया उसने गुनाह किया है तो आप कोर्ट किसका देख

0: देखना चाहिए, हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे हैं? इतना इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़की गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा, हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको। अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे, उसको फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी। हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं। हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते, क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ, क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको।
1: Shraddha Walkar, a 27-year-old call center employee, was allegedly murdered by her live-in partner, Poonawala, in May 2022. The prosecution alleged that he strangled her, chopped her body into multiple pieces, stored them in a refrigerator and disposed of them over several days in different parts of Delhi. Poonawala, who had rented a flat in Delhi's Mehroli, where the alleged murder took place, was arrested on November 12, 2022. Let's take a look at this report.
2: She was strangled, chopped into pieces, her body stored in a freezer, and then disposed of in different parts of India's national capital. In 2022, Shraddha Walkar's murder most foul consumed a nation. Horrified by the barbaric nature of her death and disposal at the hands of her boyfriend, Aftab Poonawala. You'd think that 4 years into such a murder trial, justice would have been served. The truth, not even close. On Saturday, NDTV exposed a shocking favor granted to Aftab by a Delhi court, permitting him to skip a scheduled hearing so he could appear for his MA sociology examination from Tihar Jail. As the report went viral, the public asked, why should the main accused in one of India's most gruesome murder cases have court proceedings adjusted around his academic calendar? But as it turns out, that court leniency is just the tip of the iceberg. An NDTV investigation has now examined court records and spoken to sources familiar with the proceedings. What emerges is that this is not the first time the trial has been delayed or adjusted to accommodate Aftab's schedule. 10 months ago, proceedings were postponed after Aftab sought time for a dental appointment. On another occasion, the court also accommodated a request linked to a scheduled psychiatric consultation. Viewed individually, these may appear to be routine judicial orders. Viewed together, they point to a pattern where the accused's personal requirements have repeatedly taken precedence over the pace of a trial that has already stretched for more than 3 years. The scale of that delay is significant. The FIR in the Shraddha Walkar murder case was registered on November 10, 2022. Charges were framed only in May 2023. Since then, more than 215 hearings have taken place. Yet the prosecution is still presenting evidence. The charge sheet itself runs to more than 13,000 pages. NDTV has also accessed details explaining why the proceedings have moved so slowly. Cross-examination has become one of the biggest reasons. Sources say defense questioning frequently stretches across multiple hearings. One prosecution witness, a head constable, has already spent 8 separate hearings under cross-examination, and that exercise is still continuing. Courtroom time is also repeatedly consumed verifying references from the enormous case record. The result is a trial that continues to move at a painstaking pace. Meanwhile, Aftab continues his postgraduate studies, receives favors for examinations and medical appointments, while Shraddha's family awaits justice or what's left of her family. Her father, Vikas Walkar, died in February 2025 without seeing justice for his daughter. Her grandmother also passed away during the pendency of the trial. Her last rites have still not been performed because the remains recovered during the investigation continue to be preserved as evidence in the case. With Tejshree Purandre in Delhi, Bureau Report, NDTV.
1: Three days after NDTV put spotlight on Rajasthan's maternity mystery deaths, the state government has swung into action. NDTV's investigation had revealed a series of deaths of women following childbirth at government hospitals in Rajasthan, which sparked concerns over state's public healthcare system. 18 maternal deaths since May, 9 in just 6 days. Now, Rajasthan Health Minister is all set to visit Bhilwara, and the state government has also called for an urgent and high-level meeting of the health department. The Rajasthan government has also ordered a special panel probe. Let's get into a BJP presser taken by Gaurav Bhatia. Take a look.
3: So Tahir Hussain wo gunda hai.
4: Towards this war,
3: Ankit Sharma apne kartavya ka palan karke bheed ke samne aata hai, to Tahir Hussain wo gunda hai jo aam aadmi party mein Arvind Kejriwal ka daina haath tha. जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया. और आगे कोर्ट कहता है, when the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu. अब सवाल यह आता है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं. और बड़ी प्रखरता से हमने इस पर प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था. कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा. और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था. उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी. और आज जब यह फैसला आया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह न्याय की जीत है, यह जनता की जीत है, यह कानून की जीत है, यह संविधान की जीत है. यह सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप यह प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था. आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आज ये भी पूछा जाएगा, किन कारणों की वजह से आपने ये नफरत फैलाई? आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने ये किया, ये जनता को विश्वास है. और ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था ताहिर हुसैन को? तीसरा जो बड़ा सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी दोनों को उत्तर देना चाहिए, जब कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, आईबी का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं? ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है. तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया? ये पूछा जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं? ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्ला खान का आज का बयान, अमानतुल्ला खान का बयान ये कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्ला खान, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय अंकित शर्मा जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके साथ जनता खड़ी है, भाजपा खड़ी है, उसके लिए एक शब्द नहीं। और एक दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अमानतुल्ला खान आज बयान देते हैं। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए, न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल हो गए। और ये बहुत पीड़ा से, बहुत भारी मन से मैं एक बात कहूंगा, 51 बार अंकित शर्मा के पार्थिव शरीर में चाकू भोंकने के निशान थे। ये
1: और बीजेपी लीडर गौरव भाटिया देर अटैकिंग आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल ओवर ताहिर हुसैन्स कन्विक्शन इन द मर्डर केस ऑफ आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा इन कनेक्शन टू दिल्ली रायट केस। फॉर नाउ विल स्लिप इन अ शॉर्ट ब्रेक, मोर अपडेट्स ऑन द अदर साइड।

0: देखो मैम, गाड़ी में तो 5 तो आराम से हो गए, और 2 टू व्हीलर दो पीछे थे, और टू व्हीलर पे और 2-3 टू व्हीलर और थी, पर भीड़ भी थी ना, तो कौन कहाँ से आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो। पर जितने शक्ल ध्यान में उतने पूरे ध्यान में मैम कौन कौन थे।
1: और आपकी गाड़ी में बच्चे भी थे?
0: हाँ, 2 बच्चे थे, बच्चे तो 4 थे, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे थे, और बाकी हम 2 कपल थे, 8 लोग थे हम गाड़ी में।
1: आपके मुताबिक मैम, उन्होंने आपका कितनी दूर तक पीछा किया और उस दौरान क्या हुआ था?
0: लगभग उन्होंने हमारा 20-30 किलोमीटर तक तो पीछा ही किया, पूरा किया, भावली डैम से लेके गोंदिया तक, गोंदा तक, वहाँ तक पूरा पीछा किया उन्होंने हमारा। और वो भी पीछा ही नहीं किया, जहाँ जहाँ ट्रैफिक मिल रही थी हम रुक रहे थे, वहाँ वहाँ आके ठोक रहे थे वो रोड से। वो शांत नहीं बैठे पीछे आके कि चलो शांत है जा रही गाड़ी, रुके नहीं, पूरे जहाँ पे ट्रैफिक लगी वहाँ पे उन्होंने एक एक कांच फोड़ी, 6 कांच उन्होंने बराबर 6 जगह पे फोड़ी।
1: तो मैम, जहाँ आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जहाँ पे गाड़ी रुकी थी, वहाँ पे तो लोग भी होंगे, उन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी?
0: मैम लोग थे, हमने मदद मांगी, काफी लोग रुके, पर वहाँ पे वातावरण ऐसा था कि हम रुक भी नहीं सकते थे।
1: जी
0: जैसे हम रुक जाते तो वो पूरा कांच भी फूटी हुई थी, तो फिर अंदर की तरफ वो हमला कर देते हम लोगों को, वो डर था, इसलिए हम फिर भाग गए, रुके नहीं वहाँ पे।
1: उस वक्त मैम, आप और आपके परिवार की मानसिक स्थिति क्या थी? क्या लग रहा था कि जान को भी खतरा है?
0: मैं जान को भी खतरा थी, गाड़ी चलाने वाला भी कैसे चला रहे थे उनको पता है, बच्चे वीडियो भी निकाल रहे हैं, हमने सब क्या बताऊं मैम, क्या गुजरी है, जो अभी वो उन लोगों पे गुजरी होती तो भी पता चलता हूँ उनको कि क्या हुई, उनकी माँ बहन उनको कुछ होता तो पता चलता उन लोगों को कि क्या हो रही है।
1: तो आप पुलिस तक कब पहुंचे थे और कोऑपरेशन आपको मिल रहा है पुलिस से?
0: हाँ मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, पूरे सब पुलिस लोगों से सहकार्य पूरा मिल रहा है, उनका कुछ इशू ही नहीं इसमें, पूरा कोऑपरेट कर रहे हो मुझे,
1: छह
0: स्टार्टिंग
1: लोग
0: से लेके
1: डिटेन हुए
0: एंड
1: हैं
0: तक
1: मैम,
0: पूरा।
1: 6 लोग डिटेन हुए हैं। आपको लगता है उससे ज्यादा लोग
0: हाँ
1: थे जो आपके पीछे जा रहे थे गाड़ी में और बाइक्स पे?
0: हाँ मैम थे मैम 12, मुझे हाँ 10-12 लोग थे मैम,
1: जी, तो अभी
0: क्योंकि
1: आप
0: मैम
1: सबको
0: है 6 लोग
1: पहचान
0: नहीं कर
1: पाएंगे
0: सकते
1: कि
0: इतना
1: वो ही
0: दूर 20
1: चैलेंज है।
0: किलोमीटर तक पीछा।
1: हाँ, तो वो चैलेंज है कि 12 लोगों को आप पहचान शायद
0: यस
1: ना
0: मैम पहचान
1: पाओगे,
0: पाएंगे,
1: आप पहचान पाओगे।
0: 12 लोग तो नहीं मैम, पर 8-9 लोग को तो पहचान पाएगी आराम से, क्योंकि
1: मैम
0: उनके
1: तो
0: फोटो है हमारे पास, और 4 लोगों के फोटो मिले हमें।
1: जी मैम, तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप यू वर स्टैंडिंग देयर, आपने उनसे बात की, आपने उनसे बोला था उनका स्वभाव ठीक नहीं है, क्या आपको लगता है कि अगर आप विरोध ना करते तो शायद ये हमला ना होता? आप खड़े हुए वहाँ पे डटे रहे और आप पे हमला हुआ था।
0: हाँ तो मैम बात वही होती है ना, छेड़छाड़ी हुई, हमने कुछ बोला उन्होंने कुछ बोला, मैम छेड़छाड़ी क्यों करे, छेड़छाड़ी मत करो ना तुम लेडीज से, फिर तुम लेडीज को छेड़ रहे हो और मैं सीधा निकल जाऊँ मैम, इतना भी ये नहीं है हम थोड़ा तो बोलेंगे ना कि क्यों देख रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: भाई
1: आपने सही
0: तुम्हारा
1: किया।
0: काम
1: मेरा
0: को,
1: मेरा
0: इतना
1: प्रश्न
0: तो
1: ये
0: बोल सकते ना
1: है
0: मैम।
1: जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस घटना के बाद क्या आपको लगता
0: मैम ये
1: है कि
0: आज का
1: लोग,
0: नहीं है, आज का नहीं है। हाँ
1: मेरा प्रश्न ये है कि इस घटना के बाद हमने जो वीडियो पे देखा है, आपको लगता है कि लोगों को डर लगेगा छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज़ उठाने से?
0: नहीं मैम नहीं लगेगा डर,
1: आपका क्या संदेश
0: छेड़छाड़ के
1: होगा
0: खिलाफ आवाज
1: औरतों
0: उठानी
1: को,
0: चाहिए मैम, तो
1: आपका क्या
0: फिर क्या
1: संदेश होगा
0: मैम
1: औरतों को?
0: उन्होंने पकड़ के फिर रेप करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्या
1: नहीं नहीं
0: बोल रहे हैं मैम?
1: बिल्कुल, आपका क्या संदेश है औरतों को जो ये छेड़छाड़ हर रोज इनका इसका सामना करना पड़ता है उनको?
0: मैम ये छेड़छाड़ तो हम नासिक में भी बहुत सामना करते हैं, कोई कट दे के जाता है, कोई रिक्शा वाले ये करते हैं मैम, हम क्या बोलो, पर मैम हम ऐसे नहीं कि कोई जाए छेड़े कोई इशारे करे हम बोले हाँ भाई ले मेरे तरफ से भी ये इशारा तुझे, नहीं ना मैम ऐसे नहीं रहता है इतना, हम यूपी बिहार, कल तो परसों मैम आपको सच बोलूँ मुझे लग रहा था कि मैं यूपी बिहार में ही हूँ पूरा
1: ये एक्चुअली यूपी बिहार
0: पूरा
1: की
0: मुझे वो फीलिंग
1: कहानी
0: आ रही थी
1: नहीं है
0: कि
1: मैम,
0: मैं यहाँ पे
1: ये
0: नासिक में नहीं हूँ।
1: इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटी मैम, इट्स द सेफ्टी ऑफ वुमेन दैट शुड बी पैरामाउंट। आज भी क्या आपको
0: यस
1: लगता है कि आपका परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है?
0: मैम डर डर तो लगता है मैम थोड़ा सा, पर अभी डर के तो फायदा भी नहीं ना मैम, जो होगा वो देखा जाएगा। पुलिस भी है, नासिक पुलिस भी है, कोऑपरेट कर रही है और प्रिकॉशन भी लेगी हमारे लिए। हमें नासिक के कमिश्नर संदीप कर्णिक साहब भी सब एकदम करते प्रॉपर है, उनके बारे में तो कुछ सवाल ही नहीं, सब अच्छे से है, सब हैंडल करेगी हमें अच्छे से।
1: अभी तो 6 डिटेन हो गए हैं, शायद और भी होंगे। आप न्याय के साथ साथ किस तरह की कार्रवाई देखना चाहते हैं ताकि दोबारा किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो?
0: कार्रवाई तो चाहिए मैम, कुछ ना कुछ पुलिस लोगों ने ये अपने वकील जो सबने लेना चाहिए मैम, वो तो लेंगी उनके हिसाब से मैम, उनको भी पता है कि ये क्या चल रहा था, क्या हुआ है हमारे साथ।
1: मैम, मेरा आखिरी सवाल, आप बहुत ही ब्रेव थे, आपकी आपका परिवार बहुत ब्रेव था उस दिन संडे को जब ये वारदात हुआ था। आपका संदेश क्या होगा उन महिलाओं को, उन परिवारों को जो डर के रहते हैं जब ऐसे वारदात होते हैं? बहुत लोग होते हैं जो चुप होके आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्या संदेश होगा उनको?
0: मैम क्या रहता है ना, लोग महिलाएं जो रहती है मैम डरते, कोई कोई घूंघट में रहता है, कोई फैमिली वालों को नहीं अच्छा लगता है। अभी समझो मेरे भी फैमिली वालों को अच्छा नहीं लगता होगा कि मेरी इतनी वीडियोस आ रही, न्यूज़ आ रही मैम, पर जो उस दिन मेरे ऊपर जो बीती ना मैम, वो मुझे ही पता है, मेरे बच्चों को पता है, जो 8 लोग हैं ना हम, वो हमारी जगह भी रुकते ना, तो आप लोगों को और सबको पता चलेगा कि ये क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ। बोलने के लिए मैम आसान लगता है लोगों के कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर जब बीतती है ना मैम जिनके ऊपर, उनको ही पता चलता है कि क्या हुआ है हमारे साथ।
1: आपके बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी है अभी? आप उनसे बात कर रहे हैं, बोल रहे डरना नहीं चाहिए, जो आपने किया, आपके परिवार ने किया, वो बिल्कुल सही था।
0: नहीं, बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी है मैम, बच्चे मेरे डैशिंग है, ऐसे इतने भी कमजोर लोग नहीं मैम हम।
1: ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दोज गून्स। आई होप जस्टिस इज सर्व्ड इन दिस केस एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग आउट। थैंक यू। News just coming in from the state of Maharashtra. Fresh trouble is brewing inside the Ajit Pawar-led NCP. In a significant development, a senior party leader has challenged the election of Sumitra Pawar as the NCP's national president, triggering a fresh leadership controversy within the party. We're talking about the national secretary, Sachin Anand Singh, who has issued a legal notice to Sumitra Pawar, the working president, Praful Patel, and party secretary, Brij Mohan Srivastav, questioning the legitimacy of the election process that elevated Sumitra Pawar to the top post. I have with me Sujata, who joins me live. Sujata, the fissures within this faction of the NCP now out in the open. Well, yes, Vedika, and a fresh controversy has now erupted again within the Ajit Pawar-led NCP, and we know that the entire matter has begun with Sachidanand Singh, a party member and also who has been associated with the party for almost 15 years. He's the state president for the state of Jharkhand as far as the Ajit Pawar-led NCP is concerned. Now, he sent a legal notice to NCP's national president, Sunetra Pawar, stating that her election and her getting elected as a national president for the party states invalid, and so does the election of the office bearers. And he is asking for another election process to be held, stating that a letter that was submitted by Praful Patel on the 26th of February, days after Ajit Pawar's death in a plane crash, it clearly stated that until the national president is elected, Praful Patel would be taking over the powers that of a national president and making the decisions. However, the meeting that was held, it was not done as per the letter that was submitted to the election commission, and he's calling this to be invalid by submitting a legal notice and stating that Sunetra Pawar's election as the national president is invalid, and is asking for a re-election. And this has somewhere again resurfaced and highlight all of the problems that once again seems to be flousing that in the Ajit Pawar-led NCP. And the party authorities are yet to give out an official statement on the same, but here Sachidanand Singh, who happens to be who once was a close aide of Ajit Pawar, was elected by him as the National General Secretary in the Karjat Convention, has stated that he will speak with the party officers and the leads
2: to discuss about this matter and that he wants the elections to be held again. Back to you.
1: Sujata, thanks for joining me live. We, of course, will keep tracking the developments within the faction of the NCP that now we see that the issues are now out in the open for all. Moving on now, and I'm going to shift focus to the National Capital Region. Activist Sonam Wangchuk's hunger strike has entered its 17th day, with support and concern growing over his health. Activists have appealed to Wangchuk to end his hunger strike, citing concerns of his well-being and urging a resolution through dialogue. Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray has criticized the government, calling it insensitive towards the concerns being raised. Also, actor Omi Vaidya has expressed concern, urging people not to let Phunsuk Wangdo die and highlighting Wangchuk's long hunger strike and declining blood sugar levels.
3: He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble, you know, which is kind of fantastic. I suggest you look him up and see what he's up to, because right now he is on a very long hunger strike. It's over many, many weeks, and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Now, why is he on the hunger strike? Well, he has some issues with the education system in India. He has some issues with independence for Ladakh and environmentalism. And whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. You know, I think he's a pretty impressive person.
1: The probe into the Ketan Agarwal murder case continues. Now, Ketan's family has made an emotional appeal to the Prime Minister Narendra Modi for justice. Ketan's mother, Rakhi Agarwal, has written to the Prime Minister seeking a speedy investigation, an early trial and the strictest punishment for those responsible for her son's murder. In the letter, she says she never imagined a day would come when she would be pleading for justice for her own child instead of watching him build a happy future. She writes that every corner of their home reminds her of Ketan and that his absence has left an irreplaceable void in the family's life. Appealing directly to the Prime Minister, Rakhi Agarwal says she is not seeking sympathy or any special favor, only justice.
4: Ketan, लोग सब लोग जानते होंगे केतन को. आज पूरा देश हिल चुका है केतन के नाम से. केतन की मम्मी, देखो इसकी हंसी, देखो, देखो इसकी आंखें, देखो. ऐसे लग रहा वो आपके पास देख रहा, कितने हंस के देख रहा है वो. मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास ही है. हाँ, वो इसकी हंसी देखो, उसकी बातें सुनो, उसका देखो एक बार. ऐसे लग रहा था तो उसकी कोई गलती थी, मेरी कोई गलती थी जो इसको मार दिया. हाँ, क्यों मारा ये भी आज भी ये बोलता, मेरी क्या गलती है.
1: Moving on, 2 days after Delhi court allowed murder accused Aftab Poonawalla's case proceedings to be delayed for his examinations, NDTV's investigation has revealed what's happening behind bars and why the trial is taking long to be concluded. Remember, Aftab is accused of murdering his girlfriend Shraddha Walkar, chopping and disposing her body parts into an area there. But sources have told NDTV that Aftab Poonawalla was not only allowed to skip his own proceedings for an MA sociology paper, he also deferred dates for alleged dental and psychiatric appointments. Sources also say that the cross-examination process is taking more time than usual and that evidence is still being presented in court. Shraddha Walkar murder accused Aftab Poonawalla to skip a hearing for an examination and the larger questions it raises about judicial discretion, victims' rights, public faith in the justice system and the pace of justice in one of India's most shocking murder cases. NDTV's managing editor Shiva Roor has spoken exclusively to the aunt of Shraddha. Listen in.
5: Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? जो आफताब को जो जेल में बैठा है अभी, कोर्ट हियरिंग्स अटेंड नहीं करना है उसको, एमए सोशियोलॉजी का एग्जाम लेना है उसको, तो कोर्ट ने इजाजत दिया है कि चलो आप स्किप कर लो, अब बाद में देखेंगे हियरिंग्स. अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज़ को देख के कि आफताब को मल्टीपल बार मल्टीपल बार ऐसे इजाज़त दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है, एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है, एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है। आपका क्या कहना है इस पर राजल जी?
6: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है, लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर करके उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर करके उन्होंने अलविदा कर दिया, लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है, तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है। मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस।
5: और राजल जी, जब NDTV ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए, कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफ्ताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना, प्रायोरिटी न्याय नहीं है।
6: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए, उसका कॉलेज का क्यों देख रहे, कोर्ट उसका क्यों देख रहे, हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है, तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए, हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे, इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़क गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा, हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको, अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे, उसको फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी, हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बच्ची के लिए आते हैं, हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते, क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ, क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको।
1: On that note, we slip into a short break. On the other side, we return with international news. The top headline, of course, is that the Strait of Hormuz remains on the edge. Why? We'll tell you in moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड डाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
10: These are kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
11: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am

राजीव और कश्यप इनको हत्या के मामले में 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की है, दंगा फैलाने की है, आगजनी करने की है, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया।

0: केस कराया अभी तक।
1: को एक जो कॉन्स्पिरेसी की बात है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए भी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए, डेफिनेटली विल फाइल द अपील, विल फाइल द अपील फॉर द हाईकोर्ट। देखो जो हमारे आर्गुमेंट बेसिकली आर्गुमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है इनोसेंट है और नो हमें प्रोजेक्ट थे। सेकेंड ये चीज थी कि जो केस वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
2: देखा था कल जो

रूप में दिल्ली दंगे किए कायद हुसैन का दोष सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा बेगुनाह निरपराध जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था, आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: Now criticism coming against Priyanka Gandhi Vadra. Are you raising a legitimate accountability issue, or are you using a tragedy to score political points against the Congress at the moment?
1: Good morning, Parmeshwarji, and to all the NDTV viewers. Vulture politics is done by the Congress First Family and Rahul Gandhi when they go for photo ops. Let us make one thing very clear. Wayanad is nothing but a political pawn for the Congress First Family. The current MP from Wayanad is Srimati Priyanka Gandhi Vadra, and she neglects the constituency with the sense of entitlement like an absentee landlord, similar to how Rahul Gandhi had previously exploited Wayanad when he represented the place. Now, it's been 6 days since this devastating landslide has occurred, and till date, about 8 people have lost their lives. So, Priyanka Gandhi Vadra has not even bothered to visit the place, meet the families of the victims and console them. What has she done? As an MP, she's done a token tweet like she does for Palestine and Gaza, and she has totally ghosted and deserted the constituency. This is the same pattern the Congress First Family followed earlier, Rahul Gandhi, when he was MP. The overwhelming prevailing opinion was he hardly visited the place, and he was not even attentive to the problems there. In fact, people will recall that Rahul.
0: Welcome back. A family's weekend getaway in Nasik's Igatpuri turned into a nightmare after they were attacked for objecting to the harassment of a woman. The accused men launched a violent assault, attacking the family with sticks and iron rods, smashing their car's windshield and chasing them for nearly 15 kilometers. The terrified family sped away to save their lives as the attackers continued their pursuit. Nasik police have detained 9 attackers, hunters on for their accomplices. In fact, NDTV's Vedika Sood spoke with the courageous woman who stood up against the goons. Listen in to her harrowing account. I'm joined live by the woman who faced the harassment in Nasik. We, of course, won't be revealing her identity. But firstly, ma'am, I want to commend you and your family on how bravely you fought that day. I'm going to ask you the questions in Hindi. Sabse pehle, ma'am, hame bataye, us din kya hua tha?
2: हाँ मैम, संडे को हम घूमने गए थे भावली डैम नासिक में, जो महाराष्ट्र में 12 तारीख थी. तो हम 8 पर्सन थे, तो वहाँ पे हम गए, थोड़ा खाना वगैरह खाया, पानी वगैरह हमने सब खेला वगैरह. वहाँ से हम बाहर निकले तो मैम वहाँ पे एक टू व्हीलर पे 2 लोग मुझे छेड़छाड़ की, थोड़ा सा नाम वगैरह लिया उन्होंने. तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम्हें पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो, कि ये अच्छा नहीं है फिलहाल, अभी ये सब क्लाइमेट खराब है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए. तो मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ सभी चल रहा है मेरे वाइफ के साथ, तो वो भी पीछे से आए. अरे बोले चल छोड़, क्या तुम लेडीज़ के नाम ले रहे हो वगैरह. उनको थोड़े से बातचीत सुनाई वगैरह, फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए. वो दोनों निकल जाने के बाद वहाँ पे कुछ लड़के थे, गाँव के लड़के थे वहाँ के लोकल, तो उन्होंने आके है ना थोड़ा सा ये किया कि हमारे गांव के लोगों को आप क्यों ऐसा बोलते हो, तुम बाहर के हो, ऐसा वैसा सब किया उन्होंने. फिर वो लोग आके थोड़ा सा गाली गलौज करने लगे, फिर हमने भी थोड़ा सा ये किया, थोड़ी हाथाफाई हुई. वहाँ पे जो पब्लिक थी, तो जो घूमने आई पर्यटक, उन्होंने हमको बचा लिया. वो बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो. तो वहाँ पे पूरा टॉपिक क्लोज हुआ था, ये झगड़े का इशू ही नहीं था कुछ आगे जाने का. तो हम वहाँ से निकले, वो भी निकले वहाँ से, पर हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला इतना बड़ा इशू. तो हम बावली के आगे गए, वहाँ पे उन्होंने हमको रुकाया. बलूनो कार थी उनके पास, वो हमारी गाड़ी के आगे लगा दी. उन्होंने रुका के, फाइटर थे उनके हाथ में, वहाँ से पहले उन्होंने कांच फोड़ना चालू कर दिया, ड्राइवर की बाजू वाली सीट. तो वो फोड़ी तो हम डर गए, ऑब्वियसली तो डरेगी हम. फिर वहाँ से फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलाओ, भगाओ गाड़ी जोर से, कुछ भी हो मरना नहीं है. फिर वहाँ से हम भागने लगे, तो भागते भागते पीछे से फिर समझ में आया कि एक टू व्हीलर पे वो रॉड लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रॉड फेंकना चालू कर दिया, तो उनके रॉड वहाँ पे फेल हो गए. फिर से वो रॉड लेके पीछे आए, तो तब देखो मैम गाड़ी में तो परम से हो गए, और 2 टू व्हीलर 2 पीछे थे, और टू व्हीलर पे और 2-3 टू व्हीलर और थी, पर भीड़ भी थी ना, तो कौन कहाँ से आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो. पर जितने शक्ल ध्यान में उतने पूरे ध्यान में मैम कौन कौन थे.
0: और आपकी गाड़ी में बच्चे भी थे?
2: हाँ 2 बच्चे थे, बच्चे तो 4 थे, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे थे, बाकी हम 2 कपल थे, 8 लोग थे हम गाड़ी में.
0: आपके मुताबिक मैम उन्होंने आपका कितनी दूर तक पीछा किया, और उस दौरान क्या हुआ था?
2: लगभग उन्होंने हमारा 20 ते 20-30 किलोमीटर तक तो पीछा ही किया, पूरा किया भावली डैम से लेके गोंदिया तक, गोंदा तक, वहाँ तक पूरा पीछा किया उन्होंने हमारा। और वो भी पीछा ही नहीं किया, जहाँ जहाँ ट्रैफिक मिल रही थी हम रुक रहे थे, वहाँ वहाँ आके ठोक रहे थे वो रोड से।
0: Let's move on now. Politics has intensified after the Delhi court convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and three others for the brutal murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. BJP has slammed Aam Aadmi Party and stated that AAP and Congress and their ecosystems always try to protect rioters and terrorists. They also said Delhi riots were anti-Hindu massacre and Aam Aadmi Party tried to cover up for Tahir Hussain. Whereas Kejriwal has hit back at BJP and said that they had already suspended him from the party. Meanwhile, Congress MP Imran Masood has made shocking remark and said that Tahir has only been convicted because his name is not Kapil. Tahir Hussain, alongside four other co-accused, was found guilty of murder, kidnapping, promoting religious enmity and rioting. We have reactions. Take a look.
3: आज जो कड़कड़डूमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं प्रवीण कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
4: देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए। डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। देखो, जो हमारे आर्गूमेंट बेसिकली ये आर्गूमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और न वहाँ पे प्रजेंट थे। सेकेंड ये चीज़ थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
5: नमस्कार सर, हमने देखा था कल जो कड़कड़डूमा कोर्ट है उसकी तरफ से वर्डिक्ट आया था, ताहिर हुसैन के साथ साथ पांच अलग अलग लोगों के खिलाफ वर्डिक्ट जो है वो दिया गया है। 6 साल का लंबा प्रोसेस था इस पूरे घटनाक्रम को होने में और कन्विक्ट करने में, सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
6: मैम, परिवार की तो पहले से ये मांग थी कि भाई की जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा मिले और ऐसा एक कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा एक मिसाल पेश की जाए। जैसा हमारे भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईबी की तरफ से वहाँ पे अपना वर्क कर रहा था, उसको एक टारगेट किलिंग करके मारा गया था। तो हम तो इसलिए परिवार यही चाहता था पहले से ही कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और मैम, ये सभी की डिमांड थी और सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने, जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी राजनीतिक पार्टी ने, सभी जनता ने, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और फाइनली कल डिसीजन आया है। तो कुछ लोग उसमें बरी हुए हैं, उसका पहले तो 11 दोषी थे कि 11 ही दोषी है। तो परिवार यही चाहता है कि जितने भी सब दोषी हैं इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग है मैम परिवार की।
7: 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था?
8: यस्टरडे द ट्रायल कोर्ट हैज डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट। दिस वर्डिक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट लेंड्स क्रेडिबिलिटी And it also ensures that justice is delivered to the family members of the deceased Ankit Sharma.
9: अब देखिए बाकी आगे कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
10: देखिए जो एविडेंसेस कलेक्ट किए क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है ये बड़ी चीज है, अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
0: Political showdown over the alleged Ram Mandir donation theft is escalating ahead of the monsoon session of Parliament, with both the BJP and Congress sharpening their attacks over the issue. Congress has announced that it will raise the matter in Parliament, alleging serious irregularities and demanding greater transparency in the handling of temple funds. BJP has hit back, accusing the Congress of political opportunism and questioning why the party is now showing concern over Ram Mandir despite its long-standing stance on the issue. Meanwhile, the legal spotlight is intensifying. Supreme Court has issued notice to Ram Mandir Trust and sought a status report from the SIT as the investigation gathers pace amid the controversy. Ram Mandir Temple Trust has invited applications for the post of Chief Executive Officer, marking the appointment of the temple's first ever CEO. Let's take a look at some of the statements and reactions.
11: Every issue relating to the people of this country will raise in the parliament by the opposition. Certainly, this Ayodhya issue, Ram Mandir issue, is one of the biggest corruption issue in this country. Not only a corruption issue, it is an attack on the faith of Hinduism. It is an attack on faith. Definitely, we will raise this issue. Yesterday, I saw a statement from RSS. They are apologizing.
12: Yes. They are disturbed about these things.
11: The people who have done all these mischiefs are now saying they are disturbed. Can you see this?
13: What is his legitimacy and credibility to raise that? We have inquired an SIT, and if you are aware, yesterday only the accused has in the judicial custody of the accused has been extended. Yesterday only the matter has been in the purview of the Supreme Court. I am asking you, if he truly believes in the cause, why has he not visited Prabhu Sri Ram's Mandir? If he believes in that, why has he not done it? Why has Mr. Menu Gopal not gone there? He has time to go across the world but not go once to the Mandir. Only you Chunavi Hindus, that is what they are, and people are seeing through it.
14: And jashi ata cockroach janta party nirman jale, tashi navin BJP janmala ale ka. Navin BJP konti? कारण तेव्हा राम जन्मभूमीवरचं जे मंदिर होतं ते बाबरांनी पाडलं होतं, आता आपण राम मंदिर उभारलं, आता ते राम मंदिर लुटणारी नवीन बीजेपी आले बाबर जनता पार्टी, ही बाबरांची अवलाद आहे, त्या बाबरांनी ते मंदिर पाडलेलं, हे बाबराची अवलाद, हे राम मंदिर लुटताय, मग तुमच्यात आणि त्या बाबरात फरक तो काय? मग बाबर जनता पार्टीचे तुम्ही सगळे आहात का?
15: निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और ट्रस्ट को निर्देशित किया है। ट्रस्ट के लोग तो मिलकर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के ट्रस्ट हैं ये, चाहे चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, गोविंद गिरी हो, सब मिलकर लूट रहे हैं। इनको निश्चित तौर से इनको दंड मिलना चाहिए, इनको दंड मुझे लगता है कि जहाँ तक निश्चित भगवान राम इनको दंड दे रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इनको दंडित करेगा।
16: राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन अभी राम मंदिर में हुई चोरी की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और गुनाहगारों को बचाने का काम हो रहा है।
17: सबसे बड़ा एक्टर प्रोड्यूसर तो कपिल मिश्रा ही है, उन्होंने दंगा भड़काया था, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, न चार्जशीट फाइल किया, न FIR हुआ। और जो प्रोनाउंसमेंट हुआ है ताहिर के मामले में, तो जो पुलिस ने फैक्ट्स दिए होंगे उसके हिसाब से जज ने अपना माइंड अप्लाई किया होगा, उसके आधार पर वर्डिक्ट आया है। अब जजमेंट पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कपिल मिश्रा का किया, अगर मुसलमान इस तरह से खड़ा होकर के भड़काता, फांसी पर चढ़ा दिए होते, अब तक आतंकवादी कर दिए, डिक्लेयर कर दिए होते और इनकाउंटर कर देते हो।
0: Shifting tracks, a major breakthrough has come in the investigation into the Pahalgam terror attack. A Jammu court has issued a non-bailable warrant against LET chief and 2611 Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed, who is based in Pakistan. The move follows a supplementary charge sheet filed by NIA in July naming Hafiz Saeed as an accused and describing him as the mastermind of the Pahalgam terror attack in which 26 people were killed. The NIA informed the court that Hafiz Saeed remains in Pakistan and that all practical legal avenues to secure his presence in India have been exhausted. Accepting the agency's submission, the court has now issued a non-bailable warrant. The next legal step could be to declare him as a proclaimed offender, paving the way for a trial in absentia under India's new criminal laws. Investigation into the Ketan Agarwal murder case continues. Now, Ketan's family has made an emotional appeal to Prime Minister Modi for justice. Ketan's mother, Rakhi Agarwal, has written to Prime Minister seeking a speedy investigation, an early trial and the strictest punishment for those responsible for her son's murder. In the letter, she says she never imagined she would one day be pleading for justice for her own child instead of watching him build a happy future. She writes that every corner of their home reminds her of Ketan and that his absence has left an irreplaceable void in the family's life. Appealing directly to the Prime Minister, Rakhi Agarwal says she's not seeking sympathy or any special favour, but only justice. Let's listen into what Rakhi Agarwal had to say.
12: केतन, लोग सब लोग जानते होंगे केतन को, आज पूरा देश हिल चुका है केतन के नाम से। केतन की मम्मी देखो, इसकी हंसी देखो, देखो इसकी आंखें देखो, ऐसे लग रहा वो आपके पास देख रहा, कितने हंस के देख रहा है वो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास ही है। हाँ, वो इसकी हंसी देखो, उसकी बातें सुनो, उसका देखो एक बार, ऐसा लग रहा था तो उसकी कोई गलती थी, मेरी कोई गलती थी जो इसको मार दिया। हाँ, क्यों मारा ये भी आज भी ये बोलता, मेरी क्या गलती है।
0: Let's shift our focus. 2 days after Delhi court allowed murder accused Aftab Poonawalla's case proceedings to be delayed for his exams, NDTV investigation has revealed what's happening behind bars and why the trial is taking long to be concluded. Remember, Aftab is accused of murdering his girlfriend Shraddha Walkar, chopping and disposing her body parts in several areas in Delhi. Sources have told NDTV that Aftab Poonawalla was not only allowed to skip his own proceedings for an MA sociology paper, he has also deferred dates for alleged dental and psychiatrist appointments. Sources also said that the cross-examination process is taking more time than usual and that evidence is still being presented in court. And as we pointed out, a Delhi court allowed Shraddha Walkar murder accused Aftab Poonawalla to skip a hearing for an examination. The larger question it raises about judicial discretion, victims' rights, public faith in the justice system, and the pace of justice in one of India's most shocking murder cases. NDTV's managing editor Shiv Arora has exclusively spoken to aunt of Shraddha Walkar. Listen in.
18: Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. क्या आप ये सब सुनकर आपको जी क्या महसूस हुआ, जो आफताब को जो जेल में बैठा है अभी, कोर्ट हियरिंग्स अटेंड नहीं करना है उसको, एमए सोशियोलॉजी का एग्जाम लेना है उसको, तो कोर्ट ने इजाज़त दिया है कि चलो आप स्किप कर लो, आप बाद में देखेंगे हियरिंग्स। अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज़ को देख के कि आफ्ताब को मल्टीपल बार ऐसे इजाज़त दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है, एक डेंटल अपॉइंटमेंट।

0: मिले और उनको फांसी की सजा मिले, और ऐसा एक कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा एक मिसाल पेश की जाए, जैसा हमारे भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईबी की तरफ से वहाँ पे अपना वर्क कर रहा था, उसको एक टारगेट किलिंग करके मारा गया था। तो हम तो श्री परिवार यही चाहता था पहले से ही कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और मैम ये सभी की डिमांड थी और सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने, जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी राजनीतिक पार्टी ने, सभी जनता ने, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। और फाइनली कल डिसीजन आया है, तो कुछ लोग उसमें बरी हुए हैं। उसका पहले तो 11 की 11 दोषी थे कि 11 ही दोषी है, तो परिवार यही चाहता कि जितने भी सब दोषी है इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग है मैम परिवार की।
1: 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था, और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था?
2: Yesterday, the trial court has delivered a verdict. This verdict is very significant because it lends credibility and it also ensures that justice is delivered to the family members of the deceased Ankit Sharma.
3: अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
4: देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
5: Now a family's weekend getaway in Nasik's Igatpuri turned into a nightmare after they were attacked for objecting to the harassment of a woman. The accused men launched a violent assault, attacking the family with sticks and iron rods, smashing their car's windshield and chasing them for nearly 15 kilometers. The terrified family sped away to save their lives and the attackers continued their pursuit. Nasik police have now detained 9 attackers. The hunt is on for their accomplices. Now, NDTV's Vedika Sood spoke with the courageous woman who stood up, in fact, against the goons. Listen in to her conversation to this harrowing account.
6: I'm joined live by the woman who faced the harassment in Nasik. We, of course, won't be revealing her identity. But firstly, ma'am, I want to commend you and your family on how bravely you fought that day. I'm going to ask you the questions in Hindi. सबसे पहले, ma'am, हमें बताइए उस दिन क्या हुआ था?
7: हाँ मैम, संडे को हम घूमने गए थे भावली डैम नासिक में, जो महाराष्ट्र में 12 तारीख थी, तो हम 8 पर्सन थे। तो वहाँ पे हम गए, थोड़ा खाना वगैरह खाया, पानी वगैरह हमने सब खेला वगैरह, वहाँ से हम बाहर निकले तो मैम वहाँ पे एक टू व्हीलर पे दो लोग मुझे छेड़छाड़ की, थोड़ा सा नाम वगैरह लिया उन्होंने, तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम्हें पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो, कि ये अच्छा नहीं है, फिलहाल अभी ये सब क्लाइमेट ख़राब है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए। तो मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि कुछ सभी चल रहा है मेरे वाइफ के साथ, तो वो भी पीछे से आए, अरे

0: जो घूमने आई थी पर्यटक, उन्होंने हमको बचा लिया और बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो। तो वहाँ पे पूरा टॉपिक क्लोज हुआ था, ये झगड़े का इशू ही नहीं था कुछ आगे जाने का। तो हम वहाँ से निकले, वो भी निकले वहाँ से, पर हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, इतना बड़ा इशू। तो हम बावली के आगे गए, वहाँ पे उन्होंने हमको रुकाया, बलूनों कार थी उनके पास, वो हमारे गाड़ी के आगे लगा दी, उन्होंने रुका के, फाइटर थे उनके हाथ में, वहाँ से पहले उन्होंने कांच फोड़ना चालू कर दिया, ड्राइवर की बाजू वाली सीट, तो वो फोड़ी तो हम डर गए, ऑब्वियसली तो डरेगी हम। फिर वहाँ से फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलाओ, भगाओ गाड़ी जोर से, कुछ भी हो मरना नहीं है। फिर वहाँ से हम भागने लगे, तो भागते भागते पीछे से फिर समझ में आया कि एक टू व्हीलर पे वो रॉड लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रॉड फेंकना चालू कर दिया, तो उनके रॉड वहाँ पे फेल हो गए। फिर से वो रॉड लेके पीछे आए, तो तब देखो मैम, गाड़ी में तो 5 तो आराम से हो गए, और 2 टू व्हीलर तो पीछे थे, और टू व्हीलर पे और 2-3 टू व्हीलर और थी, पर भीड़ भी थी ना, तो कौन कहाँ से आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो। पर जितने शक्ल ध्यान में उतने पूरे ध्यान में मैम कौन कौन थे।
1: और आपकी गाड़ी में बच्चे भी थे?
0: हाँ, 2 बच्चे थे, बच्चे तो 4 थे, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे थे, बाकी हम 2 कपल थे, 8 लोग थे हम गाड़ी में।
1: आपके मुताबिक मैम उन्होंने आपका कितनी दूर तक पीछा किया और उस दौरान क्या हुआ था?
0: लगभग उन्होंने हमारा 20-30 किलोमीटर तक तो पीछा ही किया, पूरा किया, बावली डैम से लेके गोंदा तक, वहाँ तक पूरा पीछा किया उन्होंने हमारा। और वो भी पीछा ही नहीं किया, जहाँ जहाँ ट्रैफिक मिल रही थी हम रुक रहे थे, वहाँ वहाँ आके ठोक रहे थे वो रॉड से।
2: Now, a major breakthrough has come in the investigation into the Pahalgam terror attack that happened last year. A Jammu court has issued a non-bailable warrant against Lashkar-e-Toyba chief terrorist and 2611 Mumbai attacks mastermind Hafez Saeed, who is in fact based in Pakistan, has been getting all kinds of safe haven and sponsorship from the Pakistani government and deep state. The move follows a supplementary charge sheet filed by the NIA in July, naming Hafez Saeed as an accused and describing him as the mastermind of the Pahalgam terror attack in South Kashmir, in which 26 innocent people were killed. The NIA informed the court that Hafez Saeed remains in Pakistan and that all practical legal avenues to secure his presence in India have been exhausted. Accepting the agency's submission, the court issued the non-bailable warrant. The next legal step could be declared on Hafez Saeed as a proclaimed offender, paving the way for the trial in absentia under India's new criminal laws, BNS. And it's time to head for a short break, but news and updates will continue on NDTV. Keep watching.

0: Welcome back, viewers. The investigation into the Ketan Agarwal murder case continues. Now, Ketan's family has made an emotional appeal to Prime Minister Narendra Modi for justice. Ketan's mother, Rakhi Agarwal, has written to the Prime Minister seeking a speedy investigation, an early trial, and the strictest punishment for those responsible for her son's murder. Now, in the letter, she says she never imagined she would one day be pleading for justice for her own child instead of watching him build a happy future. She writes that every corner of their home reminds her of Ketan, and that is, his absence has left an irreplaceable void in the family's life. Appealing directly to the Prime Minister, Rakhi Agarwal says she is not seeking sympathy or any special favour, but only justice in the case.
1: Ketan, तुम सब लोग जानते होंगे केतन को, आज पूरा देश हिल चुका है केतन के नाम से। केतन की मम्मी, देखो इसकी हंसी, देखो देखो इसकी आंखें, देखो ऐसे लग रहा वो आपके पास देख रहा, कितने हंस के देख रहा है वो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास ही है। हाँ, वो इसकी हंसी देखो, उसकी बातें सुनो, उसका देखो एक बार, ऐसे लग रहा था उसकी कोई गलती थी, मेरी कोई गलती थी जो इसको मार दिया। हाँ, क्यों मारा ये भी आज भी ये बोलता, मेरी क्या गलती है।
0: Now, 2 days after the Delhi court allowed murder-accused Aftab Poonawalla's case proceedings to be delayed for his exams, NDTV exclusive investigation has revealed what's happening behind bars and why the trial is taking long to be concluded. Remember, Aftab is accused of murdering his girlfriend Shraddha Walker, chopping and disposing her body parts in, and sources have told NDTV that Aftab Poonawalla was not only allowed to skip his own proceedings for an MA sociology paper, he has also deferred dates for the alleged dental and psychiatric appointment. Sources also said that the cross-examination process is taking more time than usual and that evidence is still being presented in the court. It's a horrific case of denial of justice, justice being delayed completely. The entire country was shocked and outraged with the way the murder was conducted. The least that one expected was there would be justice. And these are, in fact, the reactions that we're picking up on this story.
2: Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? Jo Aftab ko jo jail mein baitha hai abhi, court hearings attend nahi karna hai usko, MA sociology ka exam lena hai usko, to court ne ijazat diya hai ki chalo aap skip kar lo, aap baad mein dekhenge hearings. अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज़ को देख के कि आफ्ताब को मल्टीपल बार ऐसे इजाज़त दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है, एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है, एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है। आपका क्या कहना है इस पर राजल जी?
3: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है, लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर करके उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर करके उन्होंने अलविदा कर दिया, लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है, तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है। मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस।
2: और राजल जी, जब NDTV ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए, कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना, प्रायोरिटी न्याय नहीं है।
3: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए। उसका कॉलेज का क्यों देख रहे हैं, कोर्ट उसका क्यों देख रहे हैं? हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है। तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए, हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे हैं? इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़की गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको। अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे, उसको फांसी देनी ही चाहिए, और तभी हमारे यहाँ श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी। हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं। हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ, क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको।
0: And now to an exclusive NDTV investigation. 3 days after NDTV put spotlight on Rajasthan maternity mystery deaths, the state government has swung into action. NDTV's investigation had revealed a series of deaths of women following childbirth at the government hospitals in Rajasthan, which sparked concerns over the state's public healthcare system. 18 maternal deaths since May, 9 in just 6 days. Now the Rajasthan Health Minister is all set to visit Bilwara, and the state government has also called for an urgent and high-level meeting of the health department. The Rajasthan government has also ordered a special panel to probe this entire matter. It's a big NDTV investigation. Take a look.
4: NDTV's investigation into the maternal deaths that shook Rajasthan has now reached the highest levels of the state government. After our report from Kota, Bikaner and Jodhpur highlighted the unanswered questions surrounding the deaths of new mothers, the Rajasthan Health Department has called an emergency review meeting in Jaipur. The Health Minister summoned principals of all government medical colleges, hospital superintendents, senior gynecologists and experts, including specialists from AIIMS. The focus: what caused the sudden spike in maternal deaths, and could these tragedies have been prevented?
5: Sporadically, so quickly, yes. And we've checked all the medications, the drugs, everything. So we are ourselves very anxious to know that what where is the thief actually?
4: NDTV's investigation had documented families still waiting for answers, newborns growing up without their mothers, and survivors spending weeks on dialysis instead of caring for their babies.
6: मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
4: Families told NDTV they are still struggling to obtain complete medical records. and say they have received little support after losing their loved ones.
7: मुझे डॉक्टरों के लापरवाही लग रही है. अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है. तीन महीने से घर बैठा हूँ. मकान किराया का मेरे पास.
4: NDTV report also raised questions over post-operative monitoring, possible lapses in infection control, and the multiple investigations still underway into IV fluids, surgical consumables, and other possible factors. Officials maintain that the exact cause has not yet been established. Now the government says every maternal death will be reviewed separately. Hospital-wise reports have been sought. Compliance with infection control SOPs will be scrutinized. And if negligence is found, officials say accountability will follow.
5: We've called them all, having a brainstorming. So we are trying to see as quickly as possible to arrive at some what the problem is.
4: The health minister will also visit Bhilwara, where 5 maternal deaths were reported in 6 days, and Banswara, where 2 more maternal deaths have raised fresh concerns. The government has now moved into action, but for families who have lost daughters, wives, and mothers, the questions remain unchanged. What caused these deaths? Could they have been prevented? And who, if anyone, will ultimately be held accountable? With Bismi Taksin and Harsha Kumari Singh, NDTV Bureau Report.
0: And viewers, child marriage is a humanitarian crisis. It traps vulnerable young girls in a vicious cycle of abuse, exploitation, and poor health. Consequences that spill across generations. All too often, young grooms abandon their responsibilities and flee, leaving a child bride behind to raise an infant alone. Vulnerable and isolated, these young mothers are forced to rebuild their lives from scratch. Or worse, they fall prey to even darker crimes. A heartbreaking account comes from West Bengal's Dinajpur district, where a young girl was subjected to the crime of child trafficking soon after she was married off as a minor.

0: Tina was just 15 when she was married off. Within a year, she gave birth to a child, becoming a mother while still a child herself. Just as she was trying to cope with her new reality, her husband abandoned her. Tina was left alone, desperate to find a way to feed her newborn baby.
1: उसे लगा कि अपने जीवन यापन चलाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। पड़ोस में ही कोई बाहर से एक फैमिली आई थी, उसके संपर्क में वो आई, कुछ दिन रही और पड़ोस वाले भी उसे जानते थे। उसे कहने लगे कि तुम चलो और मैं तुम्हें नौकरी अच्छी दिलाऊंगा, तुम अच्छा से रहने लगोगी। बच्चे को साथ लेकर उसे किशनगंज लेके आए। 5 दिन उसे किशनगंज में रखा गया। फिर बच्चा को किशनगंज में छोड़कर उस बच्ची

0: वो प्रेमनगर बहादुरगंज में बेच दिया गया।
1: Away from her home, separated from her child, under the false promise of employment, Tina was sold into a trafficking ring with the intention of pushing her into prostitution. Her desperate protests were met with brutal violence. Any sign of hope seemed bleak and entirely out of reach. But Tina wasn't ready to give up.
0: जब दलाल उसे वहाँ पर छोड़कर या बेच के ही वो एक दलाल जो था वो चला गया दूसरे दलाल के हाथ में। वहाँ का जो मेन दलाल था वो वॉशरूम गया। इस दौरान वो ताक में लगी थी कि हमें यहाँ से निकलना है। वो किसी तरह से वहाँ से निकल करके एक किलोमीटर लगभग पैदल वो दौड़ती रही, भागती रही। फिर एक नज़दीक के एक पान की दुकान में जाके वो सांस ली और कही कि मुझे बचाइए। तो उन्हें पता था कि राह संस्था मैं काम करती है, तो उसने सूचना दिया। तो हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए। पुलिस की बहुत अच्छी पहल रही, बहुत मदद किया पुलिस ने। फिर उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया गया।
1: After Tina was rescued, she was produced at the Child Welfare Committee and an FIR was filed against the captors. But Tina's trauma was far from over. Though she was safe, her baby was still missing, separated from her for 15 agonizing days.
2: A trafficker jo thi, wo uske bacche ko rakhe gaye. Apna bachcha ko lene ke liye phir Child Helpline wala ko bola to 3 baar gaya rescue karne ke liye. Nahi mila bachcha. उसके बाद से 1:30 बजे रात में रोड पर रख दिया कि कुत्ता सब खूब भूखने लगा ना, तब जाके चाइल्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेटर मनोज जी थे वो गए, पुलिस सब भी गई और उस बच्चा को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन में रखा गया।
1: द 3 अक्यूज्ड वर अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन एंड टीना वाज रीयूनाइटेड विद हर पेरेंट्स। Today, the NGO Rahat, a partner of Just Rights for Children, keeps a close watch on Tina and her child. Rahat is also involved in awareness campaigns to ensure no other child or adult suffers Tina's fate. Tina's ordeal is a stark reminder that predators often come from within our own communities and are known to us. Child trafficking is a reality operating closer to us than we dare to believe. If you see or suspect an arrangement involving a child that seems transactional, look closer. Ask the difficult questions. Inform the local police or child helpline. One conversation, one phone call can save a life and protect a childhood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
6: 1933। सरसों से सरसों।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद विथ नो कैपिटल एंड नो कनेक्शंस कुड बिल्ड, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदानीज सिटिंग अनडिस्कवर्ड।
9: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। थ्रू इनोवेटर्स रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen,

0: yesterday only the accused has in the judicial custody of the accused has been extended. Yesterday only the matter has been in the purview of the Supreme Court. I am asking you, if he truly believes in the cause, why has he not visited Prabhu Sri Ram's Mandir? If he believes in that, why has he not done it? Why has Mr. Venugopal not gone there? He has time to go across the world but not go once to the Mandir. Only use Chunavi Hindus, that is what they are, and people are seeing through it.
1: निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और ट्रस्ट को निर्देशित किया है. ट्रस्ट के लोग तो मिलकर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के ट्रस्ट हैं ये. चाहे चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, गोविंद गिरी हो, सब मिलकर लूट रहे हैं. इनको निश्चित तौर से इनको दंड मिलना चाहिए. इनको दंड, मुझे लगता है कि जहाँ तक, निश्चित भगवान राम इनको दंड दे रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इनको दंडित करेगा.
2: राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन अभी राम मंदिर में हुई चोरी की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है और गुनाहगारों को बचाने का काम हो रहा है.
3: Now to a big political development in the national capital. Politics has intensified after the Delhi court convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and three others for the brutal murder of an intelligence bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. BJP has slammed Aam Aadmi Party and stated that the AAP and Congress and their ecosystem always try to protect rioters and terrorists. They also said that the Delhi riots were in fact a conspiracy and anti-Hindu massacre, and the Aam Aadmi Party tried to cover up for Tahir Hussain. Now, Aam Aadmi Party top leader Kejriwal has hit back at the BJP and said that they had already suspended him from the party. Meanwhile, Congress Member of Parliament Imran Masood has made a shocking remark and said that Tahir has only been convicted because his name is not Kapil. Tahir Hussain, alongside four other co-accused, were found guilty in the murdering, kidnapping and promoting religious enmity as well as rioting. Here's the political reactions that we are picking up.
4: आज जो कड़कड़डूमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं, प्रवीण कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है. आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है. अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके. ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक.
5: देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है. कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए. डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट. देखो, जो हमारे आर्गूमेंट, बेसिकली ये आर्गूमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और न वहाँ पे प्रेजेंट थे. सेकेंड ये चीज़ थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है. अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा.
6: नमस्कार सर, हमने देखा था कल जो कड़कड़डूमा कोर्ट है उसकी तरफ से वर्डिक्ट आया था. ताहिर हुसैन के साथ साथ पांच अलग अलग लोगों के खिलाफ वर्डिक्ट जो है वो दिया गया है. छह साल का लंबा प्रोसेस था इस पूरे घटनाक्रम को होने में और कन्विक्ट करने में. सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
7: मैम, परिवार की तो पहले से ये मांग थी कि भाई की जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा मिले और ऐसा एक कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा एक मिसाल पेश की जाए. जैसा हमारे भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईबी की तरफ से वहाँ पे अपना वर्क कर रहा था, उसको एक टारगेट किलिंग करके मारा गया था. तो हम तो इसलिए परिवार यही चाहता था पहले से ही कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले. और मैम, ये सभी की डिमांड थी और सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया. मीडिया ने, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सभी राजनीतिक पार्टी ने, सभी जनता ने, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और फाइनली कल डिसीजन आया है

0: कुछ लोग उसमें बरी हुए हैं। उसका पहले तो 11 दोषी थे कि 11 ही दोषी है, तो परिवार यही चाहता कि जितने भी सब दोषी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग है मैम परिवार की।
1: 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के संजय सिंह इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था?
2: Yesterday, the trial court has delivered a verdict. This verdict is very significant because it lends credibility and it also ensures that justice is delivered to the family members of the deceased Ankit Sharma.
3: अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
4: देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता।
5: Now moving on to news from Maharashtra, a family's weekend getaway in Nasik's Igatpuri turned into a nightmare after they were attacked for objecting to the harassment of a woman. The accused men launched a violent assault, attacking the family with sticks and iron rods, smashing their car's windshield and chasing them for nearly 15 kilometers. The terrified family sped away to save their lives as the attackers continued their pursuit. Nashik police have detained 9 attackers. Meanwhile, the hunt is on for their accomplices. Now, even as we stay on this entire big story, and there are questions that continue, NDTV's Vedika Sood spoke with the courageous woman who stood up against the goons. Listen in to her harrowing account in this conversation.
6: I'm joined live by the woman who faced the harassment in Nasik. We, of course, won't be revealing her identity. But firstly, ma'am, I want to commend you and your family on how bravely you fought that day. I'm going to ask you the questions in Hindi. सबसे पहले, ma'am, हमें बताइए उस दिन क्या हुआ था?
7: हाँ मैम, संडे को हम घूमने गए थे भावली डैम नासिक में, जो महाराष्ट्र में 12 तारीख थी। तो हम 8 पर्सन थे, तो वहाँ पे हम गए, थोड़ा खाना वगैरह खाया, पानी वगैरह हमने सब खेला वगैरह, वहाँ से हम बाहर निकले। तो मैम, वहाँ पे एक 2-व्हीलर पे 2 लोग मुझे छेड़छाड़ की, थोड़ा सा नाम वगैरह लिया उन्होंने, तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम्हें पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो, कि ये अच्छा नहीं है, फिलहाल अभी ये सब क्लाइमेट ख़राब है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए। तो मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ सभी चल रहा है मेरे वाइफ के साथ, तो वो भी पीछे से आए। अरे बोले, चल छोड़, क्या तुम लेडीज़ के नाम ले रहे हो वगैरह। उनको थोड़े से बातचीत सुनाई वगैरह, फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए। वो दोनों निकल जाने के बाद वहाँ पे कुछ लड़के थे, गाँव के लड़के थे वहाँ के लोकल, तो उन्होंने आके है ना थोड़ा सा ये किया कि हमारे गांव के लोगों को आप क्यों ऐसा बोलते हो, तुम बाहर के हो, ऐसा वैसा सब किया उन्होंने। फिर वो लोग आके थोड़ा सा गाली गलौज करने लगे, फिर हमने भी थोड़ा सा ये किया, थोड़ी हाथापाई हुई। वहाँ पे जो पब्लिक थी, तो जो घूमने आई थी पर्यटक, उन्होंने हमको बचा लिया। वो बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो। तो वहाँ पे पूरा टॉपिक क्लोज हुआ था, ये झगड़े का इशू ही नहीं था कुछ आगे जाने का। तो हम वहाँ से निकले, वो भी निकले वहाँ से, पर हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, इतना बड़ा इशू। तो हम बावली के आगे गए, वहाँ पे उन्होंने हमको रुकाया, बलूनों कार थी उनके पास, वो हमारे गाड़ी के आगे लगा दी। उन्होंने रुका के, फाइटर थे उनके हाथ में, वहाँ से पहले उन्होंने कांच फोड़ना चालू कर दिया ड्राइवर की बाजू वाली सीट, तो वो फोड़ी, तो हम डर गए, ऑब्वियसली तो डरेगी हम। फिर वहाँ से फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलाओ भगाओ गाड़ी जोर से, कुछ भी हो मरना नहीं है। फिर वहाँ से हम भागने लगे, तो भागते भागते पीछे से फिर समझ में आया कि एक

0: टू व्हीलर पे वो रॉड लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रॉड फेंकना चालू कर दिया, तो उनके रॉड वहाँ पे फेल हो गए। फिर से वो रॉड लेके पीछे आए, तो तब देखो मैम गाड़ी में तो 5 तो आराम से हो गए, और 2 टू व्हीलर, 2 पीछे थे, और टू व्हीलर पे और 2-3 टू व्हीलर और थी, पर भीड़ भी थी ना, तो कौन कहाँ से आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो, पर जितने शक्ल ध्यान में उतने पूरे ध्यान में मैम कौन कौन थे।
1: और आपकी गाड़ी में बच्चे भी थे?
0: हाँ 2 बच्चे थे, बच्चे तो 4 थे, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे थे, और बाकी हम 2 कपल थे, 8 लोग थे हम गाड़ी में।
1: आपके मुताबिक मैम उन्होंने आपका कितनी दूर तक पीछा किया और उस दौरान क्या हुआ था?
0: लगभग उन्होंने हमारा 20-30 किलोमीटर तक तो पीछा ही किया, पूरा किया, भावली डैम से लेके गोंदिया तक, गोंदा तक, वहाँ तक पूरा पीछा किया उन्होंने हमारा। और वो भी पीछा ही नहीं किया, जहाँ जहाँ ट्रैफिक मिल रही थी हम रुक रहे थे, वहाँ वहाँ आके ठोक रहे थे वो रॉड से।
2: Harrowing account from Nashik. We'll be keeping a very close watch on that story until justice is delivered. But clearly, at this moment, it's time to head for a short break. News and updates will continue.

0: दिन रही और पड़ोस वाले भी उसे जानते थे, उसे कहने लगे कि तुम चलो और मैं तुम्हें नौकरी अच्छी दिलाऊंगा, तुम अच्छा से रहने लगोगी। बच्चे को साथ लेकर उसे किशनगंज लेके आए। 5 दिन उसे किशनगंज में रखा गया। फिर बच्चा को किशनगंज में छोड़कर उस बच्ची को प्रेमनगर बहादुरगंज में बेच दिया गया।
1: Away from her home, separated from her child, under the false promise of employment, Tina was sold into a trafficking ring with the intention of pushing her into prostitution. Her desperate protests were met with brutal violence. Any sign of hope seemed bleak and entirely out of reach. But Tina wasn't ready to give up.
0: जब दलाल उसे वहां पर छोड़कर या बेच के ही वो एक दलाल जो था वो चला गया दूसरे दलाल के हाथ में। वहां का जो मेन दलाल था वो वॉशरूम गया। इस दौरान वो ताक में लगी थी कि हमें यहाँ से निकलना है। वो किसी तरह से वहाँ से निकल करके 1 किलोमीटर लगभग पैदल वो दौड़ती रही, भागती रही। फिर एक नज़दीक के एक पान की दुकान में जाके वो सांस ली और कही कि मुझे बचाइए। तो उन्हें पता था कि राह संस्था मैं काम करती है, तो उसने सूचना दिया। तो हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए। पुलिस की बहुत अच्छी पहल रही, बहुत मदद किया पुलिस ने। फिर उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू किया गया।
1: After Tina was rescued, she was produced at the Child Welfare Committee and an FIR was filed against the captors. But Tina's trauma was far from over. Though she was safe, her baby was still missing, separated from her for 15 agonizing days.
2: A trafficker jo thi, wo uske bacche ko rakhe gaye. अपना बच्चा को लेने के लिए फिर चाइल्ड हेल्पलाइन वाला को बोला तो 3 बार गया रेस्क्यू करने के लिए, नहीं मिला बच्चा। उसके बाद से 1:30 बजे रात में रोड पर रख दिया कि कुत्ता सब खूब भूखने लगा ना, तब जाके चाइल्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेटर मनोज जी थे वो गए, पुलिस सब भी गई और उस बच्चा को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन में रखा गया।
1: The 3 accused were arrested and sent to prison, and Tina was reunited with her parents. Today, the NGO Rahat, a partner of Just Rights for Children, keeps a close watch on Tina and her child. Rahat is also involved in awareness campaigns to ensure no other child or adult suffers Tina's fate. Tina's ordeal is a stark reminder that predators often come from within our own communities and are known to us. Child trafficking is a reality operating closer to us than we dare to believe. If you see or suspect an arrangement involving a child that seems transactional, look closer. Ask the difficult questions. Inform the local police or child helpline. One conversation, one phone call can save a life and protect a childhood.
3: Keep a close look on NDTV investigations from West Bengal to Rajasthan, but it's time to end this bulletin on Newsroom, but news and updates will continue all through the day on NDTV. Keep watching.

0: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: सरसों से सरसों। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
6: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
7: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
8: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
9: Many of the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से
7: सरसों। प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
11: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद विथ नो कैपिटल एंड नो कनेक्शन could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। Through innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
13: यही है वंदे भारतम।
14: India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
15: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
16: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
17: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into, and it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
14: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
19: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
20: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
18: I decode the global pulse, shaping the market mood.
19: I bring insights that help you make decisions that matter.
20: Insight by insight, call by call.

0: उनको थोड़े से बातचीत सुनाई वगैरह, फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए। वो दोनों निकल जाने के बाद वहाँ पे कुछ लड़के थे, गांव के लड़के थे वहाँ के लोकल, तो उन्होंने आके है ना थोड़ा सा ये किया कि हमारे गांव के लोगों को आप क्यों ऐसा बोलते हो, तुम बाहर के हो, ऐसा वैसा सब किया उन्होंने। फिर वो लोग आके थोड़ा सा गाली गलौज करने लगे, फिर हमने भी थोड़ा सा ये किया, थोड़ी हाथापाई हुई वहाँ पे जो पब्लिक थी, तो जो घूमने आई थी पर्यटक, उन्होंने हमको बचा लिया। वो बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो। तो वहाँ पे पूरा टॉपिक क्लोज हुआ था, ये झगड़े का इशू ही नहीं था कुछ आगे जाने का। तो हम वहाँ से निकले, वो भी निकले वहाँ से, पर हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है इतना बड़ा इशू। तो हम बावली के आगे गए, वहाँ पे उन्होंने हमको रुकाया, बलूनों कार थी उनके पास, वो हमारे गाड़ी के आगे लगा दी। उन्होंने रुका के, फाइटर थे उनके हाथ में, वहाँ से पहले उन्होंने कांच फोड़ना चालू कर दिया ड्राइवर की बाजू वाली सीट, तो वो फोड़ी तो हम डर गए, ऑब्वियसली तो डरेगी हम। फिर वहाँ से फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलाओ भगाओ गाड़ी जोर से, कुछ भी हो मरना नहीं है। फिर वहाँ से हम भागने लगे, तो भागते भागते पीछे से फिर समझ में आया कि एक टू व्हीलर पे वो रॉड लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रॉड फेंकना चालू कर दिया, तो उनके रॉड वहाँ पे फेल हो गए। फिर से वो रॉड लेके पीछे आए, तो तब देखो मैम गाड़ी में तो पांच तो आराम से हो गए, और दो टू व्हीलर दो पीछे थे, और टू व्हीलर पे और दो तीन टू व्हीलर और थी, पर भीड़ भी थी ना, तो कौन कहाँ से आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो। पर जितने शक्ल ध्यान में उतने पूरे ध्यान में मैम कौन कौन थे,
1: और आपकी गाड़ी में बच्चे भी थे?
0: हाँ दो बच्चे थे, बच्चे तो चार थे, दो बड़े थे दो थोड़े छोटे थे, बाकी हम दो कपल थे, आठ लोग थे हम गाड़ी में।
1: आपके मुताबिक मैम उन्होंने आपका कितनी दूर तक पीछा किया और उस दौरान क्या हुआ था?
0: लगभग उन्होंने हमारा 20-30 किलोमीटर तक तो पीछा ही किया, पूरा किया बावली डैम से लेके गोंदिया तक, गोंदा तक, वहाँ तक पूरा पीछा किया उन्होंने हमारा। और वो भी पीछा ही नहीं किया, जहाँ जहाँ ट्रैफिक मिल रही थी हम रुक रहे थे, वहाँ वहाँ आके ठोक रहे थे वो रोड से।
2: Meanwhile, the investigation into Ketan Agarwal's murder case continues. Now, Ketan's family has made an emotional appeal to the Prime Minister for justice. Ketan's mother, Rakhi Agarwal, has written to the Prime Minister seeking speedy investigation, an early trial and the stricter punishment for those responsible for her son's murder. In the letter, she says she never imagined she would one day be pleading for justice for her own child instead of watching him build a happy future. She writes that every corner of their home reminds her of Ketan, and this and his absence has left an irreparable void in the family's life. Appealing directly to Prime Minister, Rakhi Agarwal says she's not seeking sympathy or any special favor, but only justice.
3: Ketan, लोग सब लोग जानते होंगे केतन को, आज पूरा देश हिल चुका है केतन के नाम से। केतन की मम्मी देखो इसकी हंसी, देखो देखो इसकी आंखें, देखो ऐसे लग रहा है वो आपके पास देख रहा है, कितने हंस के देख रहा है वो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास ही है। हाँ वो इसकी हंसी देखो, उसकी बातें सुनो, उसका देखो एक बार, ऐसे लग रहा था तो उसकी कोई गलती थी, मेरी कोई गलती थी जो इसको मार दिया। हाँ क्यों मारा ये भी आज भी ये बोलता, मेरी क्या गलती है।
2: Right, moving on now to Delhi, where the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, has spoken on Tahir Hussain's conviction. The Chief Minister has said the person has done wrong against the people of Delhi is Tahir Hussain. Since the Aam Aadmi Party has aligned itself with him, will Arvind Kejriwal and Sanjay Singh answer how many attempts were made to incite the riots? In fact, it has become the conviction of former Aam Aadmi Party councillor has now become the latest round of escalation, political escalation between BJP and the Aam Aadmi Party. Chief Minister has said not just Tahir Hussain but Arvind Kejriwal and Sanjay Singh along with Manish Sisodia should also be held accountable for the riots in Delhi.
4: Delhi mein jis tarike ki ghatna us dangon ke madhyam se ki gayi, Delhi ke logon ko takleef pahunchayi, Delhi mein qatle aam hua, Delhi

0: में पत्थरबाजी से लेकर के हर एक काम हुआ और अधिकारी मारे जा रहे थे, तेजाब फेंक करके उनको नाले में डाल दिया गया। ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई। और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो उस समय रचा गया, आज भी वो सारी चीज़ें दिल्ली की जनता के दिल में खड़ी हुई है एक प्रश्न चिन्ह बना करके, और दिल्ली की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करने वाली।
1: So now politics, as I was saying, has erupted, intensified after the Delhi court convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and three others for the brutal murder of IB staffer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. BJP has slammed Aam Aadmi Party and stated that AAP and Congress and their ecosystem always tries to protect the rioters and terrorists. So, you know, on the expected line from the Bharatiya Janata Party, they also has said the Delhi riots were anti-Hindu massacre and Aam Aadmi Party tried to cover up for Tahir Hussain. Whereas Arvind Kejriwal has hit back at the BJP and he has said they had already suspended him from the party. Meanwhile, the Congress MP Imran Masood has made a shocking remark and has said Tahir has only been convicted because his name is not Kapil.
2: क्या कहना चाहते हैं सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं सर बताइए।
3: आज जो कड़कड़डूमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं प्रवीण कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
4: नमस्कार सर, हमने देखा था कल जो कड़कड़डूमा कोर्ट है उसकी तरफ से वर्डिक्ट आया था, ताहिर हुसैन के साथ साथ पांच अलग अलग लोगों के खिलाफ वर्डिक्ट जो है वो दिया गया है। 6 साल का लंबा प्रोसेस था इस पूरे घटनाक्रम को होने में और कन्विक्ट करने में, सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
5: मैम, परिवार की तो पहले से ये मांग थी कि भाई की जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा मिले और ऐसा एक कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा एक मिसाल पेश की जाए। जैसा हमारे भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईबी की तरफ से वहाँ पे अपना वर्क कर रहा था, उसको एक टारगेट किलिंग करके मारा गया था। तो हम तो इसलिए परिवार यही चाहता था पहले से ही कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और मैम, ये सभी की डिमांड थी और सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने, जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी राजनीतिक पार्टी ने, सभी जनता ने, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और फाइनली कल डिसीजन आया है। तो कुछ लोग उसमें बरी हुए हैं, उसका पहले तो 11 दोषी थे कि 11 ही दोषी है। तो परिवार यही चाहता है कि जितने भी सब दोषी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग है मैम। परिवार
6: में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था?
1: Right, so that was of course this whole controversy as far as Tahir Hussain is concerned. Remember, 53 people lost their life as far as the Delhi riots are concerned, and in that 15 Hindus, 36 Muslims and 2 are still to be identified. All right, breaking news coming in. A major breakthrough. It has come in.

0: Tina was just 15 when she was married off. Within a year, she gave birth to a child, becoming a mother while still a child herself. Just as she was trying to cope with her new reality, her husband abandoned her. Tina was left alone, desperate to find a way to feed her newborn baby.
1: उसे लगा कि अपने जीवन यापन चलाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। पड़ोस में ही कोई बाहर से एक फैमिली आई थी, उसके संपर्क में वो आई, कुछ दिन रही और पड़ोस वाले भी उसे जानते थे। उसे कहने लगे कि तुम चलो और मैं तुम्हें नौकरी अच्छी दिलाऊंगा, तुम अच्छा से रहने लगोगी। बच्चे को साथ लेकर उसे किशनगंज लेके आए। 5 दिन उसे किशनगंज में रखा गया। फिर बच्चा को किशनगंज में छोड़कर उस बच्ची को प्रेमनगर बहादुरगंज में बेच दिया गया।
0: Away from her home, separated from her child, under the false promise of employment, Tina was sold into a trafficking ring with the intention of pushing her into prostitution. Her desperate protests were met with brutal violence. Any sign of hope seemed bleak and entirely out of reach. But Tina wasn't ready to give up.
1: जब दलाल उसे वहां पर छोड़कर या बेच के ही वो एक दलाल जो था वो चला गया दूसरे दलाल के हाथ में। वहां का जो मेन दलाल था वो वॉशरूम गया। इस दौरान वो ताक में लगी थी कि हमें यहां से निकलना है। वो किसी तरह से वहां से निकल करके 1 किलोमीटर लगभग पैदल वो दौड़ती रही, भागती रही। फिर एक नज़दीक के एक पान की दुकान में जाके वो सांस ली और कही कि मुझे बचाइए। तो उन्हें पता था कि राहत संस्था में काम करती है, तो उसने सूचना दिया। तो हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए। पुलिस की बहुत अच्छी पहल रही, बहुत मदद किया पुलिस ने। फिर उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया गया।
0: After Tina was rescued, she was produced at the Child Welfare Committee and an FIR was filed against the captors. But Tina's trauma was far from over. Though she was safe, her baby was still missing, separated from her for 15 agonizing days.
2: A trafficker jo thi, wo uske bacche ko rakhe gaye. अपना बच्चा को लेने के लिए फिर चाइल्ड हेल्पलाइन वाला को बोला तो 3 बार गया रेस्क्यू करने के लिए, नहीं मिला बच्चा। उसके बाद से 1:30 बजे रात में रोड पर रख दिया कि पुत्ता सब खूब भूखने लगा ना, तब जाके चाइल्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेटर मनोज जी थे वो गए, पुलिस सब भी गई और उस बच्चा को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन में रखा गया।
0: The 3 accused were arrested and sent to prison and Tina was reunited with her parents. Today, the NGO Rahat, a partner of Just Rights for Children, keeps a close watch on Tina and her child. Rahat is also involved in awareness campaigns to ensure no other child or adult suffers Tina's fate. Tina's ordeal is a stark reminder that predators often come from within our own communities and are known to us. Child trafficking is a reality operating closer to us than we dare to believe. If you see or suspect an arrangement involving a child that seems transactional, look closer. Ask the difficult questions. Inform the local police or child helpline. One conversation, one phone call can save a life and protect a childhood.
3: Haldiram's, the famous Indian chain, has opened its first ever United Kingdom store in Leicester Square, turning it into an instant distraction for the big Indian community in London. Viral video shows long queues of NRIs waiting to get their hands on their favorites like the chole bhature, bhujia and the traditional Indian sweets. The opening sparked a wave of reaction online, with many joking that London's Indian community had just one weekend planned heading to Haldiram's.

0: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
1: When the minister was directly asked whether recognition followed his note sheet, this was his response.
0: सबके एडमिशन की समय अवधि होती है और इसलिए जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसका भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए समय अवधि में, क्योंकि एडमिशन ये समय पर जो इनको संबद्धता की जो सारी मान्यता वो पूरी करने था विश्वविद्यालय ने नहीं किया कर पाए थे, और इसलिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो इसलिए हमने कहा कि भाई आप शपथ पत्र दे दीजिए, आपने कहा हमारे यहाँ ऐसा था, आप शपथ पत्र दे दीजिए, हम शपथ पत्र के आधार पर फिर कार्रवाई करें।
1: The scale of the teacher training sector in Madhya Pradesh is significant. More than 600 teacher training institutions, over 58,000 BEd seats, around 47,000 to 48,000 admissions every year. Very few government colleges, most seats controlled by private institutions. Annual fees of around rupees 30,000 or more at several colleges. Madhya Pradesh has already faced serious questions over irregularities in nursing and paramedical colleges. Now the B.Ed. college system is raising similar concerns. The difference is that nursing irregularities placed patients' lives at risk. Here the future of school children and coming generation is at stake. In Bhopal with camera person Rizwan Khan, Anurag Dwari for NDTV.
2: The scragger of the investigation has been done by my colleague Anurag Dwari, you know, painstakingly going through the documents, going to these places and exposing the malaise as far as the education system in Madhya Pradesh is concerned. Joining me right now is Mr. Alok Sharma. He's the Member of Parliament from Bhopal for the Bharatiya Janata Party. Alok ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. Sabse pehle main aapse puchna chahta hun, 2016 se ye Shri Ram College chal raha hai. 10 saal mein 10 batch 150 students ke nikal gaye. 10 सालों से इस तरीके के पेपर पर डिग्रियां भी बट रही हैं सर, कॉलेज के कॉलेज खुले जा रहे हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है।
3: देखिए, ये भोपाल की नगर निगम जो आपने खसरा उपलब्ध कराया है, ये भोपाल की नगर निगम सीमा के बाहर है, मुगालिया कोट करके गांव है और सरकारी अभिलेखों के अंदर जो खसरा पंजीबद्ध है उसकी भी आपने जैसे ही बताया, मैं काफी जागरूक जनप्रतिनिधि हूँ, आपका फोन नंबर भी मैंने सेव किया है, मैं परसों भोपाल जैसे ही पहुंचूंगा और मैं स्वयं वहाँ उस स्पॉट पे पहुंचूंगा और स्पॉट पे पहुंचने के बाद सब SDM तहसीलदार RIO थाना प्रभारी को भी बुलाऊंगा और कि किस प्रकार से यहाँ के ऊपर फर्जी संस्थाएं आके बच्चों का, चाहे भविष्य हो, BEd कॉलेज के बताते हैं संचालित होते हैं, पुस्तकालय बताया गया, प्रयोगशालय, खेल का मैदान, और वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है आप भरोसा रखिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, और हम, मैं स्वयं जनप्रतिनिधि के नाते पहली बार मेरे ध्यान में आया है, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई करके आपके चैनल को अवगत भी कराऊंगा।
2: सर, अच्छी बात है आप एक्शन लेंगे, लेकिन यही कमाल की बात है कि पहली बार ये आपके ध्यान में आया है। पिछले 20 साल से, करीब 25 साल की अगर बात करें तो सरकार BJP की है, आप लोगों की सरकार चल रही है, चाहे व्यापम का घोटाला हो, नर्सिंग का घोटाला हो, MBA स्कैम हो जिसमें CBI की जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की विफलता है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चौपट हो रहा है?
3: बिल्कुल, आप ध्यान में लाए हैं और जवाबदेही फिक्स होना चाहिए, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वक्त पे आएगा, मैं स्वयं इस पार्ट पे जाऊंगा, जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर जाऊंगा, सारे तथ्यों का जो आपने खसरा नंबर उपलब्ध कराए मैं सब राजस्व रिकॉर्ड निकालूंगा, कुलपति से भी मैं बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराऊंगा, आप निश्चित 2 दिन के बाद आप मुझसे स्वयं चर्चा करिए और मैं आपको और आपका वहाँ NDTV के जो भी संवाददाता हो अगर वो भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं समय सीमा के अंदर पूरा सहयोग दूंगा, क्योंकि ये काम अकेला आपका नहीं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में और जागरूकता के साथ NDTV मैं समझता हूं कि देश के अंदर उन जागरूक चैनलों में से जो समय के ऊपर इस प्रकार के जो खोजी पत्रकारिता करता है, स्टिंग ऑपरेशन करता है और ऐसे अपराधियों को बेनकाब करता है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे अपराधियों को पकड़वाने का काम करूंगा।
2: आलोक जी, मुझे पता है आपको जाना है, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, लेकिन सिर्फ बात अधिकारियों तक अगर टिकेगी तो बनेगी नहीं, आपको भी देख

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
13: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद विथ नो कैपिटल एंड नो कनेक्शन could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
14: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
15: भारतम। India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
16: I'm delighted to be a chairman of India of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
17: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
18: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into, and it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
15: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
19: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर डायल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
13: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद विथ नो कैपिटल एंड नो कनेक्शंस कुड बिल्ड, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदानीज Sitting undiscovered.
14: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
15: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: माँ भी हमेशा B-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
15: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
18: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
19: I'm delighted to be a chairman of such.
20: You're watching NDTV and we are getting some good news coming in for football fans in Bengaluru. They can now catch the FIFA World Cup semi-finals and final without worrying about last orders. The Bengaluru City Police has extended restaurant and hotel service hours till 3:30 a.m. and this is for July 14th, 15th and 19th when the World Cup semi-finals and final will be played in the US, Canada and Mexico. So good news coming in for fans across Bengaluru who are going to watch the FIFA World Cup semi-finals and finals. All right, with that, let's take another quick break and be back in just a bit.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: P-Mark, the mustard specialist since
4: 1933. सरसों से सरसों।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
11: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद विथ नो कैपिटल एंड नो कनेक्शंस कुड बिल्ड, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदानीज sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी।
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों
14: से सरसों। This is a show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
15: Really?
14: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
16: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
17: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
18: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
19: I think it's also important that how they are reshaping the industries. Commercial activities which they are into, and it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
16: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
9: जिनके ideas हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के national stage के हकदार। Pro innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट।

0: largest database of elite profiles or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
2: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. Through innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे भारत.
3: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे.
4: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल.
5: रियली
4: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम.

एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग अपने काम धंधे नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे, चारों तरफ से सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की एक साजिश रची गई, और उसमें अगर कुछ लोग आके कहते हैं कि हमारी सड़कें खोल दो, तो उनको आज 6 साल बाद भी उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्या मेरे घर की छत पर बम मिले क्या, पत्थर मिले क्या, एसिड मिला क्या, चक्कू मिले क्या, क्या ऐसे वीडियो नहीं है कि ताहिर की छत पर पत्थर और बम रखे थे, क्या वीडियो आज नहीं है आपके चैनल के पास या देश के किसी भी चैनल के पास, क्या वो वीडियो नहीं है जिन बस्तियों से, गलियों से और मोहल्लों से सड़कों को बंद करने वाली भीड़ निकली थी, उन्हीं बस्तियों से, गलियों से और मोहल्लों से दुकानों को जलाने वाली भीड़ भी वहीं से निकली थी। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले किए गए, जिन दुकानों के बाहर NTCA NRC के नारे लगे थे उन दुकानों को छोड़ दिया गया, और जिन दुकानों के बाहर NTCA NRC के नारे नहीं लिखे थे उन दुकानों में आग लगा दी गई। दिलबर नेगी को मारने से पहले 22 साल का नौजवान दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, मैं उनके

0: लोग थे और उनको इसीलिए कहा गया था कि दिल्ली दंगों में जब उमर खालिद फंस जाए, ताहिर हुसैन फंस जाए, तो एक ऐसी रिपोर्ट बना के दो जिससे कि सारा ध्यान उमर खालिद और ताहिर हुसैन से हट जाए। तो मुझे लगता है हम किसी रिपोर्ट को अगर कोट करें तो उस रिपोर्ट के सोर्स, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसमें अपॉइंटेड मेंबर्स के क्या क्रेडेंशियल थे उसको ध्यान में रखते हुए कोट करें।
1: क्योंकि आप जब संजय सिंह को कोट कर रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं कि उस वक्त जो इंटरिम था, जब एब्सकॉन्डिंग था ताहिर हुसैन, तो उस बीच में आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे नेता थे उनके सपोर्ट में बोला था, कई ऐसे लोग थे जो ट्विटर पर भी सपोर्ट में बोल रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोला टांग दो उसे, कड़ी से कड़ी सजा दो, हम उसके डिफेंस में नहीं आ रहे हैं। मेरे से मेरा स्टेटमेंट लेने की जगह मैं ये कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है तो आप उसको डबल कड़ी सजा दीजिए, हम किसी के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। और आज वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए यही ताहिर हुसैन है जिसने मेरी पार्टी छोड़ करके AIMIM से चुनाव लड़ा, उसको बेल दी गई ताकि वो मुस्तफाबाद में बीजेपी को फायदा पहुंचा सके, ताकि आपका MLA मुस्तफाबाद से जीत जाए।
0: नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा टांग दो उसे, तो अरविंद केजरीवाल आज अमानत खान को पार्टी से निकाल दें और संजय सिंह को निकाल दें जिन्होंने ताहिर हुसैन के समर्थन में बयान दिए थे। अरविंद केजरीवाल डबल गेम खेल रहे हैं, सामने से आके बोलेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीछे से कहेंगे अमानतुल्ला खान जाके मीडिया में बयान दे कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है। सामने से आके कोई बयान नहीं देंगे, क्या एक भी हिंदू पीड़ित परिवार के घर में अरविंद केजरीवाल मिलने गए क्या? क्या अंकित शर्मा जी की मौत पर, दिलबर नेगी जी की मौत पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कोई बयान आया था क्या? क्या दो बूंद आंसू की उनकी आंखों में आई? क्या सांत्वना के दो शब्द उन्होंने बोले? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उस वक्त हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गया क्या? उनके आंसू पोंछने का काम किया क्या? क्या ये सच नहीं है कि सड़क बंद करने वाले लोग ही दंगा करने वाले लोग भी थे? क्यों उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुलेआम मीडिया में कहा कि हम सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं? आखिर उस वक्त की सरकार दिल्ली में उनके पास थी, आप कैसे दिल्ली के लाखों हिंदुओं की सड़कें बंद कर दी गई और उनका समर्थन कर रहे थे आप सड़क बंद करने का? मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनका जो पूरा गैंग है, अपरोक्ष रूप से उनके हाथ निरपराध हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। और ये जो वो दोहरी राजनीति करते हैं जिसमें सामने से आके बोलेंगे कि हम इनके साथ नहीं हैं और पीछे से अपनी ही पार्टी के दो नेताओं को कहेंगे कि इनके समर्थन में बयान देना शुरू कर दो, ये दोहरी राजनीति दिल्ली और देश की जनता अच्छे से देख चुकी है।
1: क्योंकि आप जब कहते हैं, आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी, आप कहते हैं कि उनके निर्दोष हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं, दैट इट्स गॉट द ब्लड ऑफ हिंदूज ऑन देयर हैंड्स, मुसलमान भी मारे गए जो दिल्ली दंगे हुए हैं।
0: यस,
1: एंड बार बार बीजेपी जब सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के खून की बात करती है, तो दिस वॉज अ कम्युनल रायट, व्हेन यू पेंट इट एज ओनली डायरेक्टेड एट वन कम्युनिटी यू विल बी अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू मिल्क इट फॉर कम्युनल गेन्स।
0: दिस वॉज नॉट अ कम्युनल रायट, दिस वॉज अ प्लांट कॉन्स्पिरेसी। नो, दिस वॉज नॉट अ कम्युनल रायट, दिस वॉज अ प्लांट कॉन्स्पिरेसी टू ब्लॉक द रोड एंड देन ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम अगेंस्ट हिंदूज। उसमें मारने वाला भी अगर मर गया वो बाद में देखा जाएगा, उसके केस भी आएंगे और उसमें भी जो लोग मरे होंगे उनका भी न्याय ऐसे ही होना चाहिए, उसमें भी अगर हत्यारा है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों का दंगा नहीं था, ये हिंदुओं की बस्तियों को चारों तरफ से घेर के सड़क बंद करके हिंदुओं को नरसंहार करने की साजिश थी और इसको इसी प्रकार से रखा जाना चाहिए जैसे फैक्ट्स हैं। सड़कों को बंद करने वाली भीड़ ना, जो नारे वहां पर लगाए जा रहे थे वो नारे अगर दोबारा चैनलों में चलाए जाएंगे तो धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे उन बस्तियों में जहां पे सड़कें बंद थी, उनके मंचों से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे और जो भीड़ निकली थी, जो बसों जलाने का काम किया था, जो पुलिस वालों को मारने का काम किया था, हमने अपने कांस्टेबल रतनलाल शर्मा जी को वहां पर खोया है और अमित जी के ऊपर लगभग जानलेवा हमला करने वाली भीड़ में बुर्का पहनी हुई महिलाएं भी शामिल थी, CCTV कैमरे तोड़ने वाली पूरी भीड़ में कौन से लोग थे? मैंने धर्म की बात शुरू नहीं की है, लेकिन अगर धर्म की तरफ बात जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति इतनी इतनी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि दंगाई आतंकवादियों के समर्थन में भी आज भी कुछ राजनेता, पत्रकार और वकील आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ खड़े होने लगे हैं।
1: ओके, एंड आई थिंक द फैक्ट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स मोर देन एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर कमिंग बीइंग अपफ्रंट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। कपिल मिश्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस।

यानी 5 बजे के करीब ही अंकित शर्मा जब अपने घर के पास से गुजर रहा था दो तीन लोगों के साथ, तब उसी मॉब ने, जो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के नीचे मॉब थी, उन्होंने, उस मॉब ने उनको अंदर घसीटा था और बाद में लिंच किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा रतनलाल की डेथ हुई थी, उसके बाद विनोद कश्यप नाम के आदमी की उसी से कुछ मीटर दूर कुछ गलियां छोड़कर वहां पर उसकी लिंचिंग हुई थी, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का स्टिकर उनकी बाइक पर लगा हुआ था, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। उसकी पूरी वीडियो है, देर आर लाइक स्कोर्स ऑफ पीपल, देर आर, वो एंटी-सीए मॉब दूसरी साइड खड़ी है और वो आदमी वहां लेटा हुआ है, यानी वो मरने को है और एक आदमी उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। 25 तारीख की सुबह को ये वहां पर हाल था कि आप दूसरी गली तक में जा नहीं रहे थे, हर जगह सीआरपीएफ और ये पेट्रोलिंग हो रही थी, हर जगह कहीं आग लगी हुई थी, कहीं पर लोग अपने घरों के अंदर बिल्कुल बंद थे, यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हो चुका था।

0: कि शिव विहार के अंदर किसके घर
1: में अरे सर कमाल है, जब कन्विक्शन होता है तो आप ताहिर कपिल बाइनरी ले आते हैं, अब जब विक्टिम की बात हो रही है आप इंसानों की बात कर रहे हैं। दिस कैन नॉट वर्क सर, यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट गिव अ कम्युनल स्पिन टू कन्विक्शन एंड देन से वी मस्ट टॉक अबाउट ह्यूमनिज्म।
0: दोनों तरफ से डेथ हुई थी, मैं तो इस बात को बोल रहा हूं।
1: फिर कन्विक्शन में भी आप व्हाट अबाउटरी मत कीजिए ना,
0: ऑल द पीपल टुगेदर,
1: दोनों साइड से डेथ हुई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दोनों साइड से हुई है, इसीलिए कन्विक्शन भी दोनों साइड से हो रहे हैं ना सर। जब कन्विक्शन किसी का होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, जब कन्विक्शन ताहिर हुसैन का होता है डिस्पाइट विजुअल एविडेंस, देन यू से ओ ही इज बीइंग मेड इनटू अ फॉल गाय, इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट। यू कैन नॉट बी डिफेंडिंग पीपल हु आर विजिबली एंगेजिंग इन क्रिमिनलिटी एंड देन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड ऑफ यू।
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द पीपल
2: हु मतलब वहां पर मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूं।
3: ओके, आई'd लाइक टू स्पीक, आई थिंक द क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड टू मी।
1: ओके, वेरी क्विकली, बिकॉज़ द क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड एट स्वाति, 30 सेकंड स्वाति एंड आई एम कमिंग टू यू हुडा। यस,
2: ओके, 26 मॉर्निंग को जब मैं वहां पर पहुंची थी ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के पास, जहां अंकित शर्मा की बॉडी मिली थी, वहां लोगों ने बताया था कि वो पूरी बिल्डिंग पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पर उस बिल्डिंग के ऊपर थे, ताहिर हुसैन उसी बिल्डिंग में मौजूद था, उसके अंदर उसका घर भी है और ऑफिस भी चलता था, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, और अब कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि
3: ओके, आई'ड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट,
2: वो वहां पे मौजूद था,
3: आई'ड लाइक टू रिस्पॉन्ड,
2: और उसकी बिल्डिंग जो सबसे ऊंचे बिल्डिंग है वहां पर पत्थर भी थे, वहां
3: पद्मजी, आई थिंक आई'ड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट,
1: कैन वी प्लीज हैव वन ऑडियो अप एट अ टाइम, स्वाति फिनिश स्पीकिंग नाउ हुडा, यस।
2: और इसीलिए वहां के सब लोग ये बोल रहे थे, और इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेट शेम फॉर ऑल द यू नो अदर पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी, एआईएम एंड ऑल द अदर बीजेपी अपोजिशन इन जनरल, इन्होंने हमेशा वहां हिंदुओं की बात को ऐसे नकारा था, जबकि वो सब कहते थे कि ताहिर हुसैन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ दंगों के वक्त बल्कि उसके पहले भी वो बहुत ओपनली डिस्क्रिमिनेट करता था, और वहां के जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उसको उसने एम्पावर किया था, ये वहां के लोगों का कहना था। और आज जो कोर्ट वर्डिक्ट आया है, It's the vindication of all the local Hindus who were making those statements.
1: Okay, Huda.
3: पद्मजा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए बोलने का, बिकॉज आई बीन नॉट अलॉटेड इनफ टाइम एंड द डिबेट इज नियरिंग इट्स एंड। एनीवेज, सो ये सारा जो द इंटायर ताहिर हुसैन मामला, आई'ड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो भी चर्चा नहीं होती। इन दिस केस जहां पे ताहिर हुसैन की बात हो रही है, ही इज he has been given the right to and it's a constitutional right that he can appeal in a higher court. I mean, if he is proven guilty right now by one court, he is obviously

0: why you were questioning me, but now he's shifting from the matter. Now you won't say anything to her.
1: Shameful statement. Do you support Imran Masood's shameful statement? Yes or no? He's delegitimizing the Indian judiciary by saying that Tahir Hussain was convicted because of his being a Muslim.
0: Senthu Verma ji, aap mujhe ye bataiye ki Kapil Mishra ne jo bola tha us pe FIR honi chahiye thi ki nahi honi chahiye thi. Tell me that. अनुराग नहीं नहीं अनुराग ठाकुर सुनिए अनुराग ठाकुर के अनुराग देखिए अनुराग ठाकुर ने जो बोला था उनपे FIR होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी ये बताइए आप.
2: ओके यू नो एंड टू एवरीवन मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट द आंसर इज यस इफ यू हैव इनफ एविडेंस हुडा जरीवाला देयर शुड बी एन FIR.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: P-Mark, the mustard specialist since
5: 1933. सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर JK टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: AK Tire.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid, what will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: India
10: Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a meeting of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV. Jury, I have been a fan.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: We are over Jimmy.
14: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
16: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
17: जिनके ideas हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के national stage के हकदार। तो innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
8: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
18: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
9: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। Through innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: World comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
8: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
3: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
4: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
5: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
6: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
2: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
3: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
4: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
5: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: Khan made no bones about where his sympathy lay. He said, I'm very sad that Tahir Hussain has been held guilty for the Delhi riots. We trust that law and hope that he gets justice from higher courts. It is today that Congress MP Imran Masood gave the judgment a communal spin and declared that if Tahir was named Kapil, then he would not have faced a fate like this. But for anyone who today tries to spin that Ankit versus Tahir binary, that Tahir versus Kapil binary, consider this. What such people will not tell you is that while the Delhi court convicted Tahir Hussain, Javed, Anas, Nazim and Qasim, it also acquitted Haseen, Sameer Khan, Firoz, Gulfam, Shoaib Alam and Muntazim. Yes, while five were convicted, six were also acquitted, including Tahir Hussain's own brother. Then how do you pin a communal angle on that? But the fact is, this is where we are. With nothing immune from politics of the worst kind, of the most communal kind. Mind you, Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party have distanced themselves from Tahir Hussain today. They say we threw him out of the party as soon as his name was connected to the riots. And in fact, he went on to join the BJP's B team, the AIMIM, and even contested on Asaduddin Owaisi's party's ticket. But then what explains this good cop, bad cop routine? Why is it that the Aam Aadmi Party tries to maintain a distance from Tahir Hussain and yet to have the party's MLA Amanatullah Khan still springing to his defense? And all of this is happening, especially when some things were amply clear from day one itself. If you were to flip through the Tahir files, video footage from the day of the carnage in February 2020, which showed how people gathered on the roof of Tahir Hussain's house and used that vantage point to firebomb their neighbors. This roof you see, this is the house of Tahir Hussain. Everyone in that neighborhood knows it. And you see a whole mob which is collected on top of that roof. And from there, small Molotov cocktails, explosive devices are being flung onto the neighboring houses. I have seen this myself back then. And the damage that it caused to the houses and the temples right next door, across the street from Tahir Hussain's house. When police finally managed to get into his house, get into his factory, which is right next to his house, they found that slingshots had been fashioned, rudimentary slingshots had been fashioned out of wood and rubber band. And these slingshots were used to pelt stones at the people and police below. Gunny sacks full of stones were also found on this very roof. Now, Tahir Hussain's house is much taller than all of the adjoining buildings. It literally gave them a vantage point. It was a machan of sorts, which was used to take aim at the people around. And then, of course, there were the petrol bombs. Crate upon crate of soda bottles with cotton cloth that had been soaked in petrol, repurposed as crude Molotov cocktails. All of this and more, right there. All of it on Tahir Hussain's rooftop was found, it was sealed, it was analyzed by the police in 2020. And yet after all of that, after the conviction, after the pictures, after the evidence, we circle back, even after these 6 years, to the same question. What if Tahir was Kapil?
1: Jo evidences collect kiye, kya hua, kya nahi, kyunki court ka mamla hai, main nahi kehta. लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज़ है. अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता.
2: दिल्ली पुलिस या सरकार यहाँ भेदभाव कर रही है. कपिल मिश्रा ही दंगा भड़काए हैं और खड़ा होकर भड़काया था और पुलिस के सामने भड़काया था, तो उनका क्या हुआ? तो इस तरह का सरकार का रवैया है जो पूरा कम्युनल है वो पक्षपाती है.
3: बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं. लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था. और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा.
4: अमानतुल्ला खान का बयान ये कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है. क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए।
5: आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए, दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था, वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था।
0: Alright, and joining us on the show now, we have Delhi Law Minister Kapil Mishra, somebody who also, in fact, was very vocal at the time when the anti-CEA agitation, the anti-CEA protests were taking place in Delhi. Kapil Mishra ji, 6 saal mein bahut kuch badal gaya, aakhirkar Ankit Sharma ke murder ka judgment bhi aa gaya hai, lekin sabse zyada charcha mein aap hi ka naam hai, kyunki Imran Masood keh rahe hain ki naam, galti sirf Tahir Hussain ki itni thi ki uska naam Tahir tha, Kapil nahi tha. Kapil agar hota to wo chhoot gaye hote, bedaag hote.
6: अगर ताहिर हुसैन ताहिर नहीं होता, कपिल होता, तो अपनी छत पे पत्थर नहीं रखता। अगर ताहिर हुसैन कपिल होता तो बम नहीं रखता। अगर ताहिर हुसैन होता तो उसके घर में ताहिर हुसैन की जगह कपिल होता तो उसके घर में इतना बड़ा चाकू ही नहीं मिलता जिससे किसी को मारा जा सके। अगर ताहिर हुसैन ताहिर की जगह कपिल होता तो किसी के शव को नाले में फेंकने की हिम्मत ही नहीं होती। अगर ताहिर हुसैन ताहिर की जगह कपिल होता तो सड़कें बंद करने का पाप नहीं करता। और ये अगर इसमें पीछे तक जाएं तो अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो राम मंदिर नहीं टूटता, मथुरा पे हमला नहीं होता, काशी पे हमला नहीं होता। अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो कसाब के हाथ में बंदूक नहीं होती। अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो 9/11 नहीं हुआ होता। इसके पीछे अगर चले जाएंगे, जिस तरफ इमरान मसूद बात कर रहे हैं, तो अगर इमरान मसूद नहीं होता, अगर ये वाली जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं ये बदला हुआ होता, तो
0: लेकिन
6: मुझे लगता
0: जी
6: है कि इतनी दूर तक ना जाए इमरान मसूद। और इस किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करना, आज भी जब अपराध साबित हो चुका है उसके बाद भी केवल उसके धर्म के कारण उसके साथ खड़े होना, क्योंकि वो मेरे धर्म का है तो मैं उसको बचाऊंगा चाहे वो आतंकवादी हो, जिहादी हो, यही सोच जो है, यही सोच सबसे खतरनाक सोच है।
0: लेकिन कपिल जी, बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, 2020 की बात कर लें तो आपके ऊपर भी इल्जाम था कि जो एक प्रो सीए रैली थी जाफराबाद में, उसमें आप एक डीसीपी के बगल में खड़े होकर के लोगों को धमकाते हैं। आपने भी कहा था कि भाई 3 दिन की मोहलत देते हैं, नहीं तो फिर जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो आपने जिस तरीके का अग्रेशन किया था, आप तो छूट गए, आप कानून मंत्री बन गए, ताहिर हुसैन दोषी बन गया।
6: मैंने क्या एग्रेशन किया? मैंने सड़क खुलवाने की बात की और डीसीपी के साथ खड़े होकर बोली। क्या लोकतंत्र में पुलिस अधिकारी से यह कहना कि हमारी सड़कें खुलनी चाहिए, यह किसी भी जनतांत्रिक आंदोलन का पहला कदम होता है। क्या इस देश में सड़कें बंद करना अपराध माना जाएगा या सड़क खुलवाने की मांग करना अपराध माना जाएगा? एक पूरे क्षेत्र के लाखों हिंदू परिवार, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बुजुर्गों की एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग अपने काम धंधे नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे, चारों तरफ से सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की एक साजिश रची गई। और उसमें अगर कुछ लोग आके कहते हैं कि हमारी सड़कें खोल दो, तो उनको आज 6 साल बाद भी उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्या मेरे घर की छत पर बम मिले क्या, पत्थर मिले क्या, एसिड मिला क्या, चक्कू मिले क्या? क्या ऐसे वीडियो नहीं है कि ताहिर की छत पर पत्थर और बम रखे थे? क्या वीडियो आज नहीं है आपके चैनल के पास या देश के किसी भी चैनल के पास? क्या वो वीडियो नहीं है जिन बस्तियों से, गलियों से और मोहल्लों से सड़कों को बंद करने वाली भीड़ निकली थी, उन्हीं बस्तियों से, गलियों से और मोहल्लों से दुकानों को जलाने वाली भीड़ भी वहीं से निकली थी? सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले किए गए, जिन दुकानों के बाहर एंटी सीएए एनआरसी के नारे लगे थे उन दुकानों को छोड़ दिया गया, और जिन दुकानों के बाहर एंटी सीएए एनआरसी के नारे नहीं लिखे थे उन दुकानों में आग लगा दी गई। दिलबर नेगी को मारने से पहले 22 साल का नौजवान दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, मैं उनके परिवार से मिलके आया हूं। वो मासूम केवल अपनी छत पे सो रहा था, उसके कपड़े उतार के उसका धर्म चेक किया गया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद भी कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि किसी ने जाके सड़क खुलवाने की मांग की वो अपराधी है। ये हथियार, ये बम, ये बारूद, ये कहां से आ गए? ताहिर हुसैन ने दिल्ली के दंगे शुरू होने से एक दिन पहले थाने से अपने वेपन रिलीज कराए थे, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो क्या उसको एक दिन पहले पता लग गया था कि अगले दिन कोई भाषण होने वाला है जिसमें कोई सड़क खुलवाने की मांग करेगा और उसके बाद दंगे शुरू किए जाएंगे? ये आज पद्मजा जी, ये बातें काल्पनिक हैं। आज हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए। एविडेंस है, व्हाट्सएप की चैट के डॉक्यूमेंट उपस्थित हैं, विटनेस उपस्थित हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग उपस्थित है। आज अब लोग कन्विक्ट होना शुरू हुए हैं अपराधी। ये अंकित शर्मा जी का मर्डर पूरी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली रॉयट्स की, जिसमें चारों तरफ से सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी, उसका एक घटनाक्रम है जिसमें मासूम, निरपराध और निशस्त्र आईबी ऑफिसर को 51 बार चाकुओं से मारा गया और शव को नाले में फेंक दिया गया। मेरे को लगता है इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अब भी अगर कोई ध्यान भटकाने की कोशिश करे, डाइवर्ट कोशिश करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं वो उसी इकोसिस्टम का सपोर्ट कर रहा है जिस इकोसिस्टम ने आतंकवादियों को मासूम बताने का पाप बार बार किया है।
7: क्योंकि मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करती हूँ, एक मेरे ख्याल से नवंबर 2020 में देयर वाज अ पैनल रिपोर्ट बाय द दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन एंड इंडिपेंडेंट सिटीजंस फोरम। वो 9 मेंबर कमेटी थी एंड दे सेड दैट नो इमीडिएट लीगल एक्शन और FIR वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू एट दैट टाइम बिकॉज दिस वाज लोकल पुलिस इन कलूजन विद द बीजेपी। उन्होंने जो ये दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन था, उन्होंने भी पाया कि जानबूझकर इनएक्शन किया गया बाय द दिल्ली पुलिस एट दैट टाइम।
6: दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंडर में काम करता था और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो उस वक्त के चेयरमैन थे, मैं कहता हूं आज पद्मजा जी अभी अपने चैनल पे उनका ट्विटर अकाउंट ओपन कर लीजिए और वो ताहिर हुसैन के इस वर्डिक्ट पे क्या बोल रहे हैं ये पढ़ लीजिए। वो आज भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। तो वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन था या दिल्ली लेट्स प्रोटेक्ट द टेररिस्ट कमीशन था, अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट सरकार के अंडर में वो काम करता था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के और पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह बार बार 27 फरवरी को, 28 फरवरी को और मार्च के फर्स्ट वीक में कंटिन्यू मीडिया में आके ये बयान देते रहे कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है और ताहिर हुसैन फोन से उनके संपर्क में था। ये ऑन रिकॉर्ड संजय सिंह का बयान है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी को चाकू मार रहा था तब भी संजय सिंह जी के फोन में संपर्क में था? ऐसे कैसे संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताने के बार बार मीडिया में बयान दिए? क्यों आज 6.5 साल होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का चुना हुआ विधायक अमानतुल्ला खान आज भी ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताने का काम कर रहा है? उन्हीं का माइनॉरिटी कमीशन ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताने का काम कर रहा है। वो माइनॉरिटी कमीशन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, वो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे, उनके अपॉइंट किए हुए लोग थे और उनको इसीलिए कहा गया था कि दिल्ली दंगों में जब उमर खालिद फंस जाए, ताहिर हुसैन फंस जाए, तो एक ऐसी रिपोर्ट बना के दो जिससे कि सारा ध्यान उमर खालिद और ताहिर हुसैन से हट जाए। तो मुझे लगता है हम किसी रिपोर्ट को अगर कोट करें तो उस रिपोर्ट के सोर्स, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसमें अपॉइंटेड मेंबर्स के क्या क्रेडेंशियल थे उसको ध्यान में रखते हुए कोट करें।
7: क्योंकि आप जब संजय सिंह को कोट कर रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं कि उस वक्त जो इंटरिम था, जब एब्सकॉन्डिंग था ताहिर हुसैन, तो उस बीच में आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे नेता थे उनके सपोर्ट में बोला था, कई ऐसे लोग थे जो ट्विटर पर भी सपोर्ट पे बोल रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोला टांग दो उसे, कड़ी से कड़ी सजा दो, हम उसके डिफेंस में नहीं आ रहे हैं। मेरे से मेरा स्टेटमेंट लेने की जगह मैं ये कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है तो आप उसको डबल कड़ी सजा दीजिए, हम किसी के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। और आज वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए यही ताहिर हुसैन है जिसने मेरी पार्टी छोड़ करके AIMIM से चुनाव लड़ा, उसको बेल दी गई ताकि वो मुस्तफाबाद में बीजेपी को फायदा पहुंचा सके, ताकि आपका MLA मुस्तफाबाद से जीत जाए।
6: नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा टांग दो उसे, तो अरविंद केजरीवाल आज अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाल दें और संजय सिंह को निकाल दें जिन्होंने ताहिर हुसैन के समर्थन में बयान दिए थे। अरविंद केजरीवाल डबल गेम खेल रहे हैं, सामने से आके बोलेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीछे से कहेंगे अमानतुल्लाह खान जाके मीडिया में बयान दे कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है। सामने से आके कोई बयान नहीं देंगे। क्या एक भी हिंदू पीड़ित परिवार के घर में अरविंद केजरीवाल मिलने गए क्या? क्या अंकित शर्मा जी की मौत पर, दिलबर नेगी जी की मौत पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कोई बयान आया था क्या? क्या दो बूंद आंसू की उनकी आंखों में आई? क्या सांत्वना के दो शब्द उन्होंने बोले? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उस वक्त हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गया क्या? उनके आंसू पोंछने का काम किया क्या? क्या ये सच नहीं है कि सड़क बंद करने वाले लोग ही दंगा करने वाले लोग भी थे? क्यों उस वक्त के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने खुलेआम मीडिया में कहा कि हम सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं? आखिर उस वक्त की सरकार दिल्ली में उनके पास थी, आप कैसे दिल्ली के लाखों हिंदुओं की सड़कें बंद कर दी गई और उनका समर्थन कर रहे थे आप सड़क बंद करने का? मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनका जो पूरा गैंग है, अपरोक्ष रूप से उनके हाथ निरपराध हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। और ये जो वो दोहरी राजनीति करते हैं जिसमें सामने से आके बोलेंगे कि हम इनके साथ नहीं हैं और पीछे से अपनी ही पार्टी के दो नेताओं को कहेंगे कि इनके समर्थन में बयान देना शुरू कर दो, ये दोहरी राजनीति दिल्ली और देश की जनता अच्छे से देख चुकी है।
7: क्योंकि आप जब कहते हैं, आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी, आप कहते हैं कि उनके निर्दोष हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं, दैट इट्स गॉट द ब्लड ऑफ हिंदूज ऑन देयर हैंड्स। मुसलमान भी मारे गए जो दिल्ली दंगे हुए हैं।
6: यस,
7: एंड बार बार बीजेपी जब सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के खून की बात करती है, तो दिस वॉज अ कम्युनल रायट. व्हेन यू पेंट इट एज ओनली डायरेक्टेड एट वन कम्युनिटी, यू विल बी अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू मिल्क इट फॉर कम्युनल गेन्स.
6: दिस वॉज नॉट अ कम्युनल राइट, दिस वॉज अ प्लांट कॉन्स्पिरेसी. नो नो, दिस वॉज नॉट अ कम्युनल राइट, दिस वॉज अ प्लांट कॉन्स्पिरेसी टू ब्लॉक द रोड एंड देन ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम अगेंस्ट हिंदूज. उसमें मारने वाला भी अगर मर गया, वो बाद में देखा जाएगा, उसके केस भी आएंगे और उसमें भी जो लोग मरे होंगे उनका भी न्याय ऐसे ही होना चाहिए. उसमें भी अगर हत्यारा है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए. लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों का दंगा नहीं था, ये हिंदुओं की बस्तियों को चारों तरफ से घेर के सड़क बंद करके हिंदुओं को नरसंहार करने की साजिश थी. और इसको इसी प्रकार से रखा जाना चाहिए जैसे फैक्ट्स हैं. सड़कों को बंद करने वाली भीड़ ना, जो नारे वहां पर लगाए जा रहे थे, वो नारे अगर दोबारा चैनलों में चलाए जाएंगे तो धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे उन बस्तियों में जहां पर सड़कें बंद थी, उनके मंचों से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे. और जो भीड़ निकली थी, जो बसों जलाने का काम किया था, जो पुलिस वालों को मारने का काम किया था, हमने अपने कांस्टेबल रतनलाल शर्मा जी को वहां पर खोया है. और अमित जी के ऊपर लगभग जानलेवा हमला करने वाली भीड़ में बुर्का पहनी हुई महिलाएं भी शामिल थी. सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वाली पूरी भीड़ में किस कौन से लोग थे. मैंने धर्म की बात शुरू नहीं की है, लेकिन अगर धर्म की तरफ बात जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी. मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति इतनी इतनी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि दंगाइयों और आतंकवादियों के समर्थन में भी आज भी कुछ राजनेता, पत्रकार और वकील आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ खड़े होने लगे हैं.
7: ओके, एंड आई थिंक द फैक्ट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स मोर देन एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर कमिंग बीइंग अपफ्रंट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. कपिल मिश्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस. All right, so let's take this question across also to Sanju Verma, who's joining us from the BJP. We have journalist Swati Sharma Goyal, who in fact has documented what happened in 2020 very, very extensively. We have political analyst Ravi Shivastav, Huda Zariwala, and Ali Mehndi from the Congress joins us. Ali Mehndi saab, itne saal beet gaye, and even despite all of that, why is a communal spin being given to the judgment against Tahir Hussain? For Imran Masood to say ki agar wo Kapil hota to aisa judgment nahi aata.
8: First of all, I would like to tell on your news channel that it is really very disheartening to see that a law minister of Delhi is creating a fake and completely false narrative. Whatever he has said, that was completely false, because he was the person who stood with the DCP of that time, and he categorically said that DCP saab, agar aapne ye nahi khulwaya, to fir hum kanoon apne haath mein le lenge. That's why question arises. If his name was not Kapil, if he was someone else, if he was Ali Mehndi, so the FIR would have been launched against him.
7: Mm.
8: That is the question which India is asking, which all the rightful citizens of India, they're asking. I'm not questioning on the verdict of the lower court.
7: Mr. Mehndi, you don't have to worry about any narrative, because now we have the judgment in black and white, and you don't have to worry about what Kapil Mishra says or what Arvind Kejriwal says or what you say, because here is what the court in Karkar Duma has said. And I'm sure you would believe that the court has more wisdom than all of us combined. Here is what the court in Karkar Duma has said. In its order, they have said, Tahir Hussain was a member of an unlawful assembly which had assembled with animus against Hindus and shared the common object of rioting, arson, looting and causing harm to members of the Hindu community. So this is what a court in Delhi has said, not any political party. So if there is a communal objective, it was on the part of Tahir Hussain.
8: I am asking on your national television, the person who is now the law minister of this, the capital of this country, whatever he has said, there is not a single FIR filed against him, not a single FIR filed against the ex central minister of this country, Anurag Thakur.
7: Sir, why are you changing the goalpost? Are you accepting that if today there is any communal angle, it has been very clearly outlined by the Karkar Duma court in its judgment, where it says that there was an unlawful assembly created with the object of rioting and with animus against Hindus, of which Tahir Hussain was a part? Why are we going back to 2020 when I'm quoting to you an order from 2026?
8: I'm not going back to 2020. I'm saying that there is a legal right to all these people to appeal in the High Court. So it's the order of the lower court. So they have a legal right.
7: Sure, but till the time they avail of their legal right and that order is overturned, how can a member of parliament, a sitting member of parliament of the Congress party to which you belong, say that he has been convicted only because his name is Tahir and his name is not Kapil? He has been convicted not because his name is Tahir, people, six people have been acquitted also, including his own brother.

0: We would get windows of communication, you know what I mean?
1: Yes.
0: We would get to ours. My sat phones were down, and people couldn't get in touch with their families. So, yeah, it was challenging.
1: Well, we've
0: It's kind
1: got
0: of gone in
1: Mrs.
0: both ways.
1: Gayatri Singh with us as well. And ma'am, how did you deal with not being able to communicate in this period with Captain Siddharth Singh? How difficult was it for you? I mean, if there was no communication which was taking place, missiles flying, drones being deployed, it would have been a horror story for you. Could you tell us how you were able to carry on in this period?
2: Good evening and thank you for having me here. Well, this was a situation I was never prepared for. Every time my husband goes on board, he goes sailing, like the time when he joined ship during COVID, I knew that yes, he has to take care of a certain things and he might fall sick. But being in a war zone was something I never
1: Yeah,
2: expected.
1: he never signed on to be a naval
2: Absolutely.
1: officer. He's a civilian, and yet he
2: Yes.
1: finds himself in a war zone. I mean, it's
2: Yes.
1: unbelievable.
2: It is very unbelievable. It was very difficult. I was actually numb for the first few days. I didn't know how to react. The only thing I asked my husband was to stay in touch with me. Just, I requested him, I asked him to keep sending messages every hour just to be sure he's safe. And I was checking the news constantly. So it was, I was a little scared. I was worried. And I wanted him to just come back home. It was difficult.
1: Yeah.
2: It was very difficult. And all the phone calls and everything, because the entire family, friends knew he's in Persian Gulf. And I knew there was no way out. He told me in the morning, the very morning the war began, he said, I'm stuck. And that was heavy.
1: Yeah, no, I can imagine.
2: I didn't know how to react. I just wanted him to be out.
1: Yeah. Sonia Mathur is with us as well. She's an agro scientist. Her husband is a chief engineer. सोनिया जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आज इस प्रोग्राम पे. आपका हस्बैंड एक चीफ इंजीनियर है. इस वक्त वो कहाँ है? वो क्योंकि हमें बताया गया कि उन्होंने अपना शिप ज्वाइन किया है. उनका पोजीशन इस वक्त कहाँ है?
3: सर वो पर से सस्ट अभी ज्वाइन करने गए हैं हांगकांग से शिप ज्वाइन करना है
1: शिप ज्वाइन करना
3: एंड
1: है और वो पर्शियन गल्फ जाएंगे.
3: सर अभी कुछ एक्चुअली हमेशा ही शिप का फिक्स नहीं रहता है रूट एज यू नो तो स्टिल वी डोंट नो कि शिप कहाँ जाएगा
1: और इस स्थिति
3: बट
1: में अब ये वॉर जोन फिर से जारी, फिर से शुरू हो गया. ये हमला ईरान और यूएस के बीच में, बाकी जीसीसी नेशंस पे भी हमला हो चुका है. तो इस कंडीशन में, और जहाज पे हमला हो चुका है, इस कंडीशन में आपका सोच क्या है? आप मतलब आप काफी टेंस जरूर होंगे इस वक्त. आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है?
3: सर एक्चुअली जॉब ऐसी है कि हमेशा जाना पड़ता है बट इन द शिपिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन द शिप जब भी वो जाते हैं हमेशा टेंशन रहता है कि आपका शिप बाहर जोन में तो नहीं जाएगा या फिर और पायरेसी का सर हमेशा ही रहता है कि पायरेसी वाला एरिया जो है क्योंकि वो बल्क कैरियर पे है और हमेशा ये टेंशन रहता है हम लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं कि कभी पायरेसी एरिया में शिप ना जाए और अब सेकेंड थिंग ये वार जोन और शिप का रूट कभी भी हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कभी भी शिफ्ट हो जाता है रूट और लास्ट टाइम आपको भेज दिया जाता है सो हमेशा ही सर एक टेंशन रहती है और बहुत स्ट्रेस रहता है और अभी तो सर ऐसी सिचुएशन है कि हमेशा ही मतलब जब भी शिप पर जा रहे हैं तभी पूरा पीरियड ही स्ट्रेस में ही रहता है पूरी फैमिली का
1: हाँ
3: एंड
1: जरूर.
3: एवरीवन
1: आई कैन इमेजिन द
3: ये
1: टेंशन दैट यू गो थ्रू. कैप्टन सूद, ट्रेजिकली देर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स हुव लॉस्ट देयर लाइव्स. इंडियंस आर अ ह्यूज कम्युनिटी इन द ग्लोबल सी फेयरिंग ग्रुप, इंटरनेशनल मर्चेंट मरीन्स. एज यू ऑपरेट इन दोज वाटर्स, यू सी दीज ड्रोन्स कमिंग इन, पॉसिबली मिसाइल्स एज वेल, और रिपोर्ट्स ऑफ दिस. कुड यू जस्ट explain to us, how challenging it is to deal with your crew, because they would be aware of this scenario as well. They know the consequences of a ship being hit. You're unarmed.
4: Yes, Vishnu, a very relevant question here. And this is the time very recently that I have witnessed all this. First of all, we are not very much trained.